अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मोहब्बत के दुश्मन से, मोहब्बत इबादत यानी ओ जानू मेरी जान भी तू है, जान तो क्या ईमान भी तू है। पले खान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत के बदले मैं आ गई। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, वारिस, जी हाँ वारिस है फिल्म का नाम। लता जी के साथ में सुरेश वाडकर जी आपको सुनाने वाले हैं, घटा छा गई है।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किया है सुनने वालों, लता जी के साथ में सुरेश वाडकर जी आपको सुनाने वाले थे। घटा छा गई है, बहार आ गई है, ए हवा मेरे संग संग चलो। फ्रॉम द मूवी बाबू से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई है हलचल। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे।

छोड़ो भैया नखरा करो प्यार हमसे, आया है मौसम मस्ती का झूम के अभी। चलिए एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। नहीं नहीं, मैंने गलत कहा सुनने वालों, एक ख़ास व्यक्ति के वास्ते जिनकर कल 45वां जन्मदिन जो है, तो सभी परिवार खुश होकर के उनके लिए ये गीत को मांग किए है। और वो यानी वो खुश नसीब कौन है, वो कोई और नहीं मेरा भाई है। और प्रदीप नाथू का जबकि कल 45वां जन्मदिन जो है, तो धर्म पत्नी जो होते हैं अंशला भुलाई नाथू, अपने प्यारा प्यारा पति, दो बच्चे अलीशा और प्रियांशु अपने प्यारा प्यारा पिता के वास्ते ये गीत को मांग किए हैं। और सभी परिवार घेराव, सभी परिवार नाथू के तरफ से प्रदीप घेर यानी प्रदीप नाथू को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद अभी से पेश किया जाता है।

0: स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार भी आप सुन रहे थे और ये गीत हमने पेश किया है प्रदीप नाथू जी के वास्ते जिनकर कल 45वां जन्मदिन है। तो उनकी पत्नी जो है अंशला भुलाए नाथू, दो बच्चे अलीशा और प्रियांशु के तरफ से अपना प्यारा प्यारा पिता और सभी परिवार नाथू, सभी परिवार घिराव के तरफ से प्रदीप को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद मिले। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, ये गीत हम पेश करते हैं प्रदीप जी के वास्ते जिनका कर 45वां जन्मदिन है। तो सभी बहन जैसे मैं, सीता, मालिनी और रेशमा खुश हो करके अपने भैया जी को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश कर रहे हैं ये सुंदर गीत के साथ।
1: तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने।

मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने सी कोई चीज़ ना लूँ। और ये गीत हमने पेश किया है प्रदीप नाथू जी के वास्ते, जिनकर का 45वां जन्मदिन जो है। तो सभी बहन खुश होकर के, जैसे मैं सीता मालिनी और रेशमा के तरफ से अपना प्यारा प्यारा भाई को ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना आशीर्वाद पेश किया गया। सरस और प्रोग्राम को जारी करते हुए ये गीत हम पेश करते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्यार भरिए राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टिल नेक्स्ट टाइम।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, पूरब से जब सूरज निकले फ्रॉम मूवी बनारस से हमने पेश किए हैं। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तो प्यार न कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। फ्रॉम द मूवी सफ़र, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब देव की नैया सामने थे किनारे। सुनने वालों, मैं आप सभी को कुछ बतलाना चाहती हूँ। एक गीत जो है, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। ये गीत मेरे दिल को छू जाता है सुनने वालों। और एक कॉन्सर्ट थी साउथ प्लान में 24 तारीख दिसंबर को, और ये गीत को गाए थे वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी। बहुत खूबसूरत से उन्होंने ये गीत को गाया है, तो चलिए ये ओरिजिनल मिलकर सुनते हैं।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। और जैसे मैंने आप सभी को बताए थे कि 24 तारीख को एक कॉन्सर्ट थी थिएटर साउथ प्लाइन में, तो वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी ने ये गीत को गाए थे, बहुत खूबसूरत थी। और आप सभी को भी पता होगा कि ये किसकी बेटी है, ये है राम नारायण शिवराम जी की बेटी। सजनवा बैरी हो गए हमार, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे सुनने वालों।

सजनवा बैरी हो गए हमारे भैया, आप सुन रहे थे सुनने वालों। किसी राह हमें किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर मेरे हम सफर, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं सुनने वालों।

किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफ़र। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, गुमराह है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किया है। सुनने वालों, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए जी डरता है, कहीं भूल से तू ना समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: फ्रॉम द मूवी लीडर से हमने पेश की है सुनने वालों तेरी हुस्न की क्या तारीफ करूं। अभिनेत्री इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सारेगामा पा पा।
1: बोलो
2: हसा मत बोलो

फिल्म अभिनेत्री से हमने पेश किया है सुनने वालों सारेगामापा, अभी आप सुन रहे थे। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, रखवाला है फिल्म का नाम।

मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फरार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जिंदगी क्या है यारों की बारात।

फ्रॉम द मूवी फरार से हमने पेश किए हैं द माइती मुकेश जी की आवाज़ में जिंदगी क्या है, यारों की बारात, सहमों की बारात। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले,

एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी जिंदगी और तूफान। सुनने वालों, एक बार फिर से फिल्म फरार से हम पेश करते हैं एक बहुत सा सुंदर गीत है, ये संसार है एक नदिया। क्षमा करना सुनने वालों, यानी फरार नहीं, रफ्तार है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे संसार है एक नदिया फ्रॉम द मूवी रफ्तार से हमने पेश की है मुकेश जी की आवाज़ में। सुनने वालों, बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हम पेश करते हैं।

बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हमने पेश किया है। लता जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी उजाला से हमने पेश किया है। सुनने वालों, लता जी आपको सुनाने वाले थे दिन सारा गुजारा तोरे अंगना। फ्रॉम द मूवी जंगली से आप सुनेंगे लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

दिन सारा गुजारा दोहरे अंगना। अभी आप सुन रहे थे लता गी जी के साथ में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए है। सुनने वालों, आ तू आ जरा दिल में आ, फ्रॉम द मूवी फूलों की सेत से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में, मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

फूलों की सेज है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे आ तू आ जरा दिल में आ। अय्या सुकू सुकू

कोई डगर मंजिल है मेरी प्यार। अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू।

करूं मैं क्या, सुकू सुकू अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज के। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं सुनने वालों, और ये गीत खास करके मांग की ये है मून जी बोध जी, अपनी प्यारी प्यारी प्रीतमा माला जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

खाली जाम ले बैठा हूँ, कब से इस मैखाने में कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझे।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ज़िंदगी से हमने पेश किए हैं हमने जफ़ा न सीखी जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।

तमन्ना है बर्बाद हो जा भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इंतकाम से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी भरोसा से हम पेश करते हैं

वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। गुरुदत्त की आवाज़, यानी क्षमा करना सुनने वालों, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी भरोसा से हमने पेश किए हैं बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।

बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। झुक गया आसमां इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कहाँ चल दिए इधर तो आओ।

0: चल दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ। फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमान से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे। फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने।

तेरे घर के सामने है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं दिल का भंवर करे पुकार। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शांता खेमई जी के वास्ते जो हमारे साथी कर्मचारीगण हैं और हमारे प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं।

पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हमने पेश किए हैं। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।

एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, फ्रॉम द मूवी बेनाम से हमने पेश किए हैं। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

मैं तुझ में हूँ अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम से।

0: हमारे लिए तुम हमारे लिए भी आप सुन रहे थे।
1: प्रिय भाई बहनों, समस्याओं से भागना एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ये केवल समाधान की दूरी बढ़ाती है, यानी ऑप्लोसिंग की दूरी बढ़ाती है। बस अपना दिमाग खोलें और स्पष्ट रूप से देखें और सही समाधान को ढूंढें, भले ही थोड़ी देर ही क्यों ना लग जाए, और अपने धर्म पे भरपूर विश्वास करें। मित्रों, विश्वास करें।

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो

मित्रों, जीवन गारंटी के साथ नहीं आता। बस ये जान लें कि मुस्कुराने से आपका चेहरा चमक उठेगा, हंसी आपका दिन रोशन कर देगी और अच्छे लोग आपका जीवन को महान बना देंगे। मित्रों, तो क्यों हम कोई अलग तरीका को अपनाएं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए भी ठीक ना हो।

मित्रों, भूख के कारण बच्चा रो रहा है। माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वो उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि बोतल में दूध अभी गर्म है, इसलिए बच्चे को अभी ठीक नहीं होगा। भाई बहनों, ये ही हमारे जीवन में होता है। हम अपने भगवान से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश होते हैं। लेकिन भगवान को पता है कि कौन सी चीज हमें कब देती है। वो जिस तरह माँ को पता है कि दूध अभी गर्म है, अभी देंगी तो मुंह जल जाएगा। मित्रों, इसी तरह आप भी ईश्वर पर विश्वास रखें, वो आपकी इच्छा समय आने पर जरूर पूरी करेंगे। मित्रों, जरूर पूरी करेंगे।

मित्रों, पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाएं, तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीर्वाद निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है, वही सच्चा आशीर्वाद है मित्रों।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

सुनने वालों को सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है भगवान से यही प्रार्थना किया जाता है कि आपके तंदुरुस्ती में परिवर्तन आए। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा और बधाई दिया जाता है। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई भी और मंगलमय दिवस प्रस्तुत है। जो अपने नौकरी की ओर पढ़ रहे हैं उनके ये कहूंगा कि हर बार की तरह मत भूलना कि गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मत सोच हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। जब ये माइंड आप में होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगा।

कहते हैं जहाँ सच्चाई है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ विजय ही विजय है।

जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। क्योंकि नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नर उतात्मम देवीम सरस्वती व्यासो ततो जय मुद्रियत। क्योंकि माता सरस्वती का देन बुद्धि और ज्ञान है।

माँ सरस्वती जो आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि एवं समृद्धि का वरदान दे। माता की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बने रहे। जो हमारे देश में सफर पे आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत। हार्दिक से स्वागत करते हुए ये कहूंगा कि आप दुनिया के एक ऐसा सुंदर देश में आए हैं जहां जो स्वर्ग के समान कहा जाता है। अभी तक यहां जो रहते हैं अपने शहर को छोड़कर बगल वाले शहर को जब उस पे दृष्टि डालते हैं तो देखा जाए कि कितना बसीन स्वार्थ खेद भी है।

देश यहाँ सुंदर सुंदर मंदिरों भी है। जैसे कि अलमेर पैता में श्री विष्णु मंदिर, दनहाख में सेवाधाम मंदिर, देव मंदिर और राधे कृष्ण मंदिर और राम मंदिर, अगर आप अंस्कदई में रहते हैं तो वहां भी एक मंदिर है, आरनहेम में शिव मंदिर, रोतरदाम में शिव मंदिर जो नीचे गुफा के तरह, जरूर जाकर देख जाना। श्रीमती विमला जी जो दनहाख के निवासी है, उनके ओर से ये सुंदर सा शिव तांडव प्रस्तुत करता हूं।

कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी थे। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मा बल आ गया था। एक दिन वे वृक्ष के नीचे बैठे हुआ था कि ऊपर बैठे हुए चिड़िया ने उस पर बीट कर दिया। कौशिक को क्रोध आ गया, लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज की प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वे एक सद गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गए। गृहस्थमी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा कि भगवन थोड़े देर और ठहरो, अभी आपके भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझे जैसे तपस्वी की अपेक्षा करके ये पति सेवा की अधिक महत्व दे रही है। और तभी गृहस्वामिनी ने देवीय दृष्टि से सब बात ज्ञान ली। उसने ब्राह्मण से कहा कि क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूँगी। ब्राह्मण क्रोध और करना तो भूल गया। उसे ये आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुआ।

कौशिक ने, वो स्त्री जो ब्राह्मणी थे उनसे पूछने लगा कि ये चिड़िया वाला बात आपको कैसे पता। तभी ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जाकर के पहुंचे।

कौशिक जब मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचे तो क्या होता है कि वहां तौल और नाप के व्यापार में लगा हुआ उसने ब्राह्मण को देखते हुए प्रणाम अभिनंदन किया और कहा, तपो धन कौशिक देव जी, आपको उस सत गृहस्थ स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लो, तब आपकी सेवा करूंगा, कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसे मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना।

आश्चर्य से घेरे हुए कौशिक बैठे सोच रहे हैं। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी की साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छे चीजें हित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को और करने से ही मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मग

चलते चलते कौशिक धीरे धीरे मगध आकर के पहुंचे जहां चांडाल का निवास स्थान था। वे नगर की गंदगी झाड़ने में लगे हुई थी। ब्राह्मण को देख करके उसने साष्टगन प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सद्गृहस्थ्य देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे है मेरा सौभाग्य है। मैं नित्य कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए।

कौशिक ब्राह्मण आश्चर्य से डूबे हुए और इंतजार कर रहे हैं और चांडाल सब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को और दिखा कर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है।

इन सारे वृतांतों को देखते हुए तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठ पूर्वक करते रहने से भी अध्यात्मकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धि मिल सकती है।

सृष्टि का संदेश आप भी समझ गए होंगे। हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले श्रीमती विमला जी, उनके ओर से गीत को मांग किया गया।

कर्म की कहानी तेरी आत्मा भी जाने और परमात्मा भी जाने। धन्यवाद दिया जाता है कि श्रीमती विमला जी जो अपने ओर से ये सुंदर सुंदर गीतों को खोज करके हमारे लिए भेजे हैं। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

नित्य है, राधा अनंत है, राधा अनादि है, राधा भगवंत है, राधा अवकार है, राधा ब्रह्म है, राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, राधा सबके है।

कहते हैं कि त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु संबंधों के बनाए रखने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो एक सुंदर सा गीत और जो श्रीमती विमला जी हमारे लिए भेजे हैं, तो हम उसे सुनाने को कोशिश करूंगा।

अब तो मिला है पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं, पर इतिहास ये भी बताते हैं कि जिससे बराबरी नहीं हो पाती लोग उसकी छवि खराब करने में जुट जाती है। शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर इकट्ठे हुए हैं स्टूडियो में और कुछ संदेश लेकर। अभी जो संदेश का विषय है, जो विषय है अभी उसके बारे में बातचीत होगा, पर हमारे साथ स्टूडियो में शांता जी भी उपस्थित है और राजेंद्र जी। तो शांता जी पहले कुछ कहे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र जी,
1: मोहब्बत तो बस एक एहसास है, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिसे हो जाए बस वही खास है। मेरी आवाज़ के प्यारे सुनने वालों, सेविका शांता जी की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आज जो कि हम यहाँ पर उपस्थित है, जैसे हमारे संजय जी ने कहा, ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम लेके, तो बढ़ चलते सुनने के लिए हमारा राजेंद्र जी क्या कहती है।
2: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। कुछ नया प्रोग्राम लेके, जो विषय है आज कपूर का है, कपूर की क्या विशेषता है सब सुनने को मिलेगा, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, और जिस लोगों को कुछ पूछना हो तो तार भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं संजय जी की तरफ, क्या कुछ कहना चाहते हैं तब तक?
0: जरूर कुछ कहना चाहता हूँ राजेंद्र जी, क्योंकि ये हर सप्ताह के तरह हम सब पहले अपने सभी सुनने वालों के लिए उदासी मन जो गीत है ना, क्योंकि किसी ने कुछ भेजा है ये उदासी मन के लिए।
2: हाँ तो जरूर, पहले उस
0: किसी ने भेजा है कि पति और पेप्सी को सामने रख कर उदास बैठा था ना। शांता जी, पेप्सी वो एक ड्रिंक होता ना।
2: हाँ, पेप्सी कोला।
0: बोले पति पेप्सी सामने रख कर के उदास बैठा था, पत्नी आया और पेप्सी पी गई और बोली कि आज उदास क्यों है। ऐसा पूछा है पत्नी ने पति से कि उदास क्यों है, तो पति बोला आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गया और ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। तो राजेंद्र जी चला दीजिए वो गाना।
2: हाँ, उदासी मन वाला गाना चलाना जरूरी है अब तो।
0: हाँ, ये तो जलाना ही पड़ेगा,
2: नहीं तो लोग उदास बैठे रहेंगे।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काय को करी। इस भजन को सुनने के बाद सबका मन उदासी से एकदम हट जाता है। और जैसा कि आपको आज का विषय पता ही है, मैंने बता रखा कि कर्पूर, कर्पूर यानी
1: कपूर कहते हैं राजेंद्र जी। जो हम लोग यहाँ पर करीना कपूर को तो थोड़ा बोलते हैं शांता।
2: नहीं, कपूर फैमिली से नहीं।
1: ओ, ये कपूर फैमिली से जुड़ा नहीं है?
2: नहीं, ये वो कपूर फैमिली है, ये कपूर ये एक वस्तु है ना।
1: वस्तु
0: नहीं तो ये इसमें कपूर को डच में क्या बोलेला?
1: कहते हैं राजेंद्र जी उसे कहते हैं काम्फर।
0: काम्फर तो अंग्रेजी में बोले लमन
1: है?
0: अंग्रेजी में
1: बोले तो काम्फर अंग्रेजी है?
0: हाँ अंग्रेजी है।
1: ना ना ना। तो दोस्तों, ये हम सब आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और जैसे कि पता चल ही गए हैं कि आज का विषय हम सब जो हमारे प्रयोग करते हुए हम काम्फर जो हम कपूर कहते हैं उसके बारे में अभी काफ़ी जानकारी हम सबको प्राप्त होने वाले है। पर राजेंद्र जी, वो तो पहला, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों लोग ने हम लोग के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़कर और खोज करके रख देते हैं, तो दूसरा क्या है आज का ऑफिशियल?
0: ऑफिशियल दूसरा है तीर्थ स्थल। भारत में एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसमें कि लोग बहुत दूर दूर से देखने को आते हैं और उसको मोक्ष पाने की भी इच्छा रखते हैं, ऐसा तीर्थ स्थल जो उससे लोगों का, मुझे लगता कि लोग सुनेंगे तो जरूर जाएंगे, थोड़ा बचाए के।
1: हाँ थोड़ा, हाँ सही बात, आप एकदम बिल्कुल सरनामी हमारे हिंदुस्तानी में बात कर रहे हो राजेंद्र जी। लोग बदल जाते हैं, आपके बदलने में थोड़ा से भी देर नहीं लगा और हमारे भाषा में जो आप सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों, आज जैसे कि अभी आपने सुने कि विषय जो है, और पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमें कपूर प्रयोग करते हैं और कपूर कहाँ प्रयोग किया जाता है शांता जी?
2: यहाँ पे खास तौर पे हम देखते हैं तो हवन में प्रयोग,
1: हवन आदि में कपूर खूब प्रयोग किया जाता है।
2: हाँ, वो पहला, हाँ, और जैसे हम जानते हैं
0: कपूर की आरती भी होती है।
1: आरती भी होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंद्रम। दोस्तों, अभी हम सब उसके बारे में जरूर काफी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, पर ये हम जाने कि हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। और अभी हम सब उस ओर बढ़ने वाले हैं जिस ओर से हम सबको काफ़ी जानकारी को प्राप्त होने वाला है। राजेंद्र जी, क्यों ना थोड़ा से संदेश सुना देते हैं तो फिर हम एक,
0: हाँ जरूर,
1: सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: हाँ, संदेश की ओर बढ़ते हैं। कर्पूर सुर्खियों में, डॉक्टर भी कपूर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक जिस कपूर के धुएं को पर्यावरणवादियों ने प्रदूषण कहकर खारिज कर दिया था, आज वही धुआं संकट में प्राणवायु बन गया है। यानी कि कुछ लोग पहले कहते थे कि ये धुआं है, इसको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राणवायु अच्छी है, प्राणवायु के लिए भी अच्छा है। एक समय था जब प्रत्येक घरों में सुबह शाम कपूर की आरती गाई जाती थी। संपूर्ण घर के कोने कोने में कर्पूर का धुआं किया जाता था। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को कर्पूर की आरती दी जाती थी, जिसमें जलती लौ का धुआं दोनों हाथों से लेकर चेहरे से लेकर सीने तक हथेलियां फेरी जाती थी। किंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ के और चंद किताबों पढ़कर पाई डिग्रियों के आंकठ घमंड में हम इतने चूर हो गए कि इन्हें अंधविश्वास मान लिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम आरती हमें ढोंग और समय बर्बादी लगने लगी। प्राणवायु कपूर आरती धुआं लगने लगी। खुद को वैज्ञानिक समझने वाले हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर हवन कपूर रीति रिवाज हमारी जीवन शैली का हिस्सा क्यों थे। हमारे पूर्वज विज्ञान से भली भांति परिचित थे। सनातन स्वयं एक विज्ञान है, लेकिन उस वक्त कोई वैज्ञानिक शब्दावली तो थी नहीं, अतः उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़कर दिनचर्या का अहम हिस्सा बना दिया। आज वैज्ञानिक प्रयोग, मात्र 3-4 दशक पूर्व तक प्रत्येक घरों में हवन होते थे, किंतु आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ और पिछड़ा मानने की मानसिकता के चलते हमने सब कुछ भुला दिया।
1: राजेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ हवन होता है, जहाँ पर कपूर को जलाया जाता है वहाँ पर, ये जैसे कि आपने भी कहे कि वहाँ कोविड का भी
0: खतरा कम होता है,
1: खतरा कम हो जाता है
0: जी,
1: तो इसमें यानी कि इससे हमारे लिए जो हम समझते थे कि हमें धुआं जो हो जाता है और हमारे हानिकारक हो सकता है, तो ये हम गलत समझते थे।
0: हाँ, वो धुआं, ये धुआं अच्छा वाला है, कपूर वाला
1: धुआं अच्छा है।
0: हाँ।
1: अच्छा, तो ये बात है,
0: जैसे हवन करते हैं तो वो जो धुआं उड़ता है वो तो वायुमंडल को शुद्ध करता है।
1: तो वैसे तो हवन हम सब करते हैं तो कुछ औषधियों के साथ ना।
0: हाँ।
1: तो उसमें तो ऐसा ऐसा चीज मिलाया गया जिसे हमें कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता
0: जी,
1: और इसमें कपूर डाल दो तो और भी बढ़िया।
0: हाँ, कपूर भी एक पेड़ से ही बनता है। हाँ, एक पेड़ कपूर का पेड़ होता है, उसी का सत निकाल के कपूर बनता है
1: ऐसा।
0: हाँ,
2: तो मैं 10 में बता दूं।
0: हाँ, बताइए।
2: जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा ना, काम्फर कपूर का पेड़ होता है, यानी कि काम्फर बोम। द काम्फर बोम इज अ बोम दी मैक्सिमल 30 मीटर हॉग होर्ड द फन और स्प्रोंग ग्रोइ द बोम अलेन इन जापान, कोरिया, मंगोलिया, इंडिया, ताइवान एंड साउथ ओस्ट चीना। काम्फर इज अ स्टॉफ दी फन हैट काम्फर हाउट वर्ड geëxtrateerd. Deze kamfer is een wit kristallijn poeder die als specerij en geneeskruid de mensheid als veel honderden jaren dient. De Japanners hebben gedurende de 17e en de 18e eeuw dit product het meest verkocht en hebben er veel geld mee verdiend. Kamfer wordt verkregen uit het hout van een kamferboom. Kamfer werd vroeger vooral bij reumatische aandoeningen en spierpijn gebruikt. तो हम आपको थोड़ा से बता दें कामफर के पेड़ के बारे में।
1: तो ये तो हमें पता ही नहीं था कि कामफर पेड़ से निकाला जाता है, पेड़ से, और उसका पेड़ होता है और उसे बनाया जाता है।
2: इसलिए हम ऐसे ऐसे आर्टिकल हम लोग लाते हैं ना, में ज्योति का प्रकाश इसलिए है,
1: जिसे हमारे जीवन का ज्योति में जो जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा और प्रकाश
2: हो जाए। हाँ, वाकई में जैसे मैं भी नहीं जानती थी, ऐसे हमारे भी बहुत से सुनने वालों जो नहीं जानते हैं।
1: सही बात है राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़े ताकि हम सब कार्यक्रम फिर आगे बढ़ा सके।
0: जरूर, एक सुंदर सा जो शंकर जी का गीत है, शिव शंकर सॉन्ग है, सोनू निगम जी ने गाया है, शिव भक्ति सॉन्ग से लिया गया है, उसको हम बढ़ाते हैं आगे।

0: जयति जयति शिव शंकरा, बहुत ही प्यारा जो भजन अभी सोनू निगम जी ने सुनाया है उसका शांता जी आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शांता जी, हाँ जी हाँ, ये काम्फर जो है ना, ये कपूर है, काम्फर एसेंशियल ओलियो वर्ड ओक इन अरोमाटिसे अंदर आंदरे गब्रुक बाय अनसुइवर हुइड jeuk, jeukbuisjes, kneuzingen, verstuikingen, ontstekingen, hoesten, koude rillingen, reumatische pijnen, spierpijn, artritis, slechte doorbloeding van de benen, schaafwonden, koorts, griep, infecties, opkomende verkoudheid. Is dat jullie apen, kamfer, gebruiker zegt hij, ook kamfer, je bent niet hier, die we gebruiker zeggen, हवन के लिए, पर काम्फर वैन भी बिकाता है, काम्फर ओली स्पिरिट्स भी बिकाता है, आप उसको जो खरीद

0: थे। आपने क्यों नहीं रीति रिवाजों के पीछे छुपे विज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की? खुद को पढ़ा लिखा कहने वाले हम ये भूल गए कि विज्ञान बिना प्रमाण के किसी को विश्वास अंधविश्वास नहीं मानता। फिर आपने कैसे बिना प्रमाण के मात्र दुष्प्रचार में बहक कर सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को अंधविश्वास ठहरा दिया? आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के वक्त, मानवता पर संकट के वक्त, आधुनिक दुनिया पुनः शरण की शरण में है। हवन, कर्पूर, अजवाइन, हल्दी, हस्त प्रक्षालन,
1: उसे और कितनी चीज में प्रयोग करते। तो हमें ये बात भी ख्याल आता था कि हम सब जब छोटे थे ना
2: जी,
1: तो नारियल के तेल हम सब घर पे निकालते थे ना
2: जी।
1: तो नारियल तेल के बाद में और उसे मिला करके बोतल में, तो वहाँ सूरीनाम एक देश है जहाँ पर एक उसे हम क्या कहे, पशु नहीं कह सकते है, उसे हम पंछी नहीं कह सकते, उसका नाम है मस्किटा। बहुत काटते थे और दूसरा होते थे मम पीरा ना,
0: मस्किटा की मच्छर,
1: मच्छर हाँ। आप कहते हैं मच्छर पर उसे हम लोग कहते हैं मस्किटा। बड़ा काट काट करके बस बना देते थे, और खास करके जब बरसात के समय आते थे ना तो बहुत काटते थे। तो हमें एक ख्याल है कि वो पहले लोग और जा करके नारियल के तेल से और कपूर लगा उसमें डाल करके और शरीर पे लगा देते। तो ये हमें पता नहीं कि ठीक था और कि नहीं ठीक था। शांता जी, इसमें आप कुछ कह सकते हैं?
2: तो जैसे अभी ने कहा ना, तो उसका खैर जो है ना
1: हाँ,
2: उससे भी मस्किटास जो है, मस्किटा जो है ना
1: हाँ,
2: मच्छर जो हमारे राजेंद्र जी कहते हैं, वो भागते हैं।
0: तो कपूर की जो स्मेल है उससे बैठ ही नहीं पाते, अगर बॉडी में लगाया है तो इसलिए वो भाग जाते। तो काटे
1: क्योंकि मैं सर मक्का जब जाते थे ना राजेंद्र जी
0: जी,
1: तो मुझे बहुत मस्किटा काटा वहाँ। आज
0: सर मक्का कहाँ रहे?
1: अरे बहुत दूर है सूरीनाम में, और यहाँ वानिका से जो छुट्टे थे वहाँ, तो वहाँ सर मक्का में एक बोट लेकर हबड़ा होते थे स्तूपफेर, और हबड़ा होकर के और जाना पड़ता था, कितना दूर चलना पड़ता था। और वहाँ उस समय पे ना ही बिजली था ना ही पानी था, क्रान जो हम कहते हैं ना वो था ही नहीं। और एक चीज था वहाँ बहुत, वो था मस्किटा। तो बहुत मुझे काटा। तो आज जब हम जानते हैं ये बात, आगे से तो हम भी लगा लेते ना कपूर का तेल। आगे कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले हैं आप?
0: आगे का जो कार्यक्रम है, इसलिए कहते हैं कि मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आंधी तूफान झंझावतों में टिक पाता है। अगर यानी कि आप अगर मजबूत हैं वृक्ष, यानी कि मजबूत है तो आंधी आए तूफान आए वो गिरने वाला नहीं है। वैसे ही आप अगर मजबूत हैं अंदर से, तो अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, हम सब ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। यही आज का कपूर का संदेश है। अब अगला संदेश इस गाने के गीत के बाद रहेगा।
1: राजेंद्र जी, मुझे तो इस संदेश सुन करके कुछ ख्याल आ गया।
0: हाँ जरूर
1: सुना सकता हूँ।
0: हाँ जरूर।
1: शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीतने के मूल मंत्र है।
0: हाँ।
1: शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देती। ये संदेश जो आपने दिए हम सबको कपूर के अंतर्गत, काफी और अच्छा संदेश जो हम सब अभी भी, क्योंकि आजकल कुछ और मिलता है ना जो आप द्रोखेस में खरीद सकते हैं और लगा लो शरीर में, तो और मस्किटा नहीं काटते, पर नहीं पता है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है।
2: अब जैसे हम भी यहाँ पे कुछ तैयारी करके खोज करके भी आई है, तो जो हम अभी आपने कहा ना कि हम सूरीनाम में नारियल के तेल में और कपूर मिलाते थे, तो ये तैखर बालम भी जो ना खबर करते उसमें भी मिला हुआ है मेंटोल और कॉम्फर।
1: तैखर बालसम
2: में भी कपूर, खनिज के अंदर में खनिज मेडल खत भी खबर कर सके, जैसे अभी ना कहा स्पीड पेन फर सिक्त कर ऐसे वैसे जो हमने कहा
1: हाँ।
2: सब में कम मात्रा से खबर कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो राजेंद्र जी संदेश जो शांता जी भी सुना दिया कि तैखर बालसम में भी कपूर का प्रयोग किया गया है, ये एक चीज है जो सूरीनाम में बहुत प्रयोग किया जाता था ना, सभी के घर पे होते थे। और एक और चीज होते थे शांता जी, छोटी सा शीशी में बोतल में, और जो
2: कॉम्फर ओली
1: उसका नाम होते थे शिलिंग
2: शिलिंग ऑयल,
1: ये पुराना

0: अच्छा, ये जो आजकल हमारे घर पे नहीं होते, पर हमारे घर पे पहले सूरीनाम में इन चीजों हर बार होते थे। और एक और होता था, उसको कहते थे अलकोलाद। वो हरी हरी होते थे, वो सिर का दर्द के लिए होते थे, लगाते अच्छा। थे। पर राजेंद्र जी, अगले विषय क्या रखे हैं आप आज का, जो कि कौन सा तीर्थ स्थान के ओर हम सब अभी छलांग लगाना
1: है? हाँ, अगला जो विषय है वो बहुत विशाल विषय रहे, और उससे पहले हम चाहेला एक जो आदि योगी का कैलाश खैर गाना है, बहुत ही अच्छा है, शंकर जी के ऊपर है, हम चाहेंगे कि उसको लोग पहले सुने और इसके बाद अगला विषय की ओर।

0: आदि योगी उतरे मुझ में, ऐसा कहते खैर जी। तो आज की जो चर्चा चल रही थी, हम कह रहे थे कि एक तीर्थ स्थल की बात करेंगे। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में एक कस्बा है, यह गंगा नदी के समीप स्थित एक तीर्थ स्थल है। यानी कि भारत के जो कस्बा मतलब एक छोटा सा शहर है और गंगा नदी के किनारे में है, तो तीर्थ स्थल कौन सा है इसके बारे में जानेंगे। यह भारत उत्तर भारत का एक प्रमुख स्थान है जो सूकर क्षेत्र के रूप में विख्यात है। सूकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कासगंज से 15 किलोमीटर दूर है। इस तीर्थ का पौराणिक नाम उखूल तीर्थ है।
1: कौन सा नाम कैसे है भैया?
0: पौराणिक मतलब पुराना, बहुत उखूल तीर्थ, उखूल।
1: हाँ।
0: उखूल तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। इसमें सोरो सुकुर क्षेत्र के प्राचीन नाम सोरोख्या का उल्लेख पाली साहित्य में भी है। सोरो सुकुर क्षेत्र में प्रत्येक अमावस्या सोमवती, अमावस्या पूर्णिमा, रामनवमी, मोक्षदा एकादशी आदि अवसरों पर तीर्थ यात्रियों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है और गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व है। यहाँ स्थित कुंड में विसर्जित की गई अस्थियाँ 3 दिन के अंत में रेणु रूप धारण कर लेती है। यहाँ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि भी है। सोरो सुकुर क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित जगत विख्यात हैं। इनके पास प्रत्येक परिवार के पूर्वजों का इतिहास रहता है। यानी जब पंडा लोग, आप जानते होंगे, गए होंगे हरिद्वार और बद्रीनाथ केदारनाथ, तो वहाँ पे पंडा रहते हैं। तो पंडा लोग क्या करते हैं कि पूरा इतिहास रखते हैं कि कौन कब तुम्हारे माँ बाप दादा पुरदादा कब आए। हाँ,
1: पंडा है क्या चीज़ है राजेंद्र जी? बढ़िया से, क्योंकि ये बात मैंने सुना है कि पंडा के पास जाना चाहिए, और पर किस लिए जाना चाहिए, वो क्या करते हैं?
0: हाँ, पंडा जो रहे, पंडा यानी विद्वान पंडित, और उस तीर्थ स्थल स्थल के पंडित। कुछ लोग पुजारी रहते हैं जो भगवान के जो मंदिर होता है उसमें पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग पंडा रहते हैं कि जो उनके भक्त आते हैं, मतलब उनके जो, जैसे आपका सूरीनाम है, तो सूरीनाम जब आप जाएंगे बद्रीनाथ तो बोलेंगे उनको कि सूरीनाम का पंडा कौन है, तो वो मिल जाएगा आपको वहाँ पे,
1: वहाँ
0: इजीली।
1: हाँ,
0: और उनका पास पूरा एक बही खाता होता है, ऐसा इतना बड़ा
1: खाता, बोले बड़ी बुक,
0: बड़ी बुक।
1: हाँ,
0: खाता मतलब आपका पूरा 10 जन्मों का, आपका बाप दादा परदादा कौन कौन वहाँ गए।
1: 150 साल पुराना,
0: 150 हजारों साल,
1: उतना पुराना
0: जब गए होंगे जब से, तो वो सब वो एक मिनट में फटाफट बता देंगे, निकालेंगे, और आपके ये पिताजी का नाम है, दादा का नाम है, परदादा का नाम है, यहाँ आए, इस स्थान में आए, वो लिखा रहता है। और अब जब आप जाएंगे तो आप भी उसमें वो लिख देंगे, और फिर वो पंडा जब मंदिर बंद हो जाते, पट बंद हो जाते, तो वो लिखा देते पंडा के हमारे घर में आना, तो उनके घर में भी जाते हैं।
1: हाँ,
0: तो इस प्रकार से वो पंडा होते हैं, बही खाता देखने।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि हम लोग अपना नाम संस्कार आदि कराते, पर हम लोग में ये भी होता है, हम लोग संकल्प आदि के लिए गोत्र का प्रयोग कर किया जाता।
0: हाँ, उसमें सब लिखा रहता है,
1: उसमें आपका, मिलेगा
0: आपका गोत्र कौन सा है, आपका दादा का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और सब नाम रहे, गोत्र रहे, और ऋषि आपके कौन से, किस गोत्र से आए,
1: सब उसी में,
0: सब सब।
1: तो ये कहाँ पर मिलेगा?
0: ये यहाँ पे भी मिलेगा, जहाँ पे आज बात चल रही, वहाँ पे भी, जहाँ जहाँ आपके पूर्वज गए होंगे।
1: हाँ जी,
0: वहाँ पे मिलेगा,
1: वहाँ पर।
0: हरिद्वार में तो सब गए होंगे,
1: हरिद्वार में गए होंगे। हाँ,
0: तो वहाँ पे मिलेगा। पहले लोग यात्रा पे जाते थे, जैसे आपके पूर्वज 150 साल पहले वाले।
1: हाँ जी,
0: बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री पहले पैदल जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश से।
1: हाँ,
0: उसमें 2-3 महीने का समय लगता था, कुछ लोग 6 महीने भी लगाते थे।
1: अच्छा,
0: गर्मी में जाते थे, और जब सर्दी आ जाते थे तो लौट के आते थे, चारों धाम यात्रा करते थे। तो जब पंडा के पास जाते थे तो वो सब वहाँ पे लिख देता था कि ये लोग यहाँ आए, वहाँ एक इस प्रकार की व्यवस्था रहती है।
1: तो अब तो जाना पड़ेगा वहाँ।
0: हाँ, जरूर जाना पड़ेगा, मैं तो गया हूँ, और मैंने हर जगह अपना इतिहास लिखा है, और हमने पिछले वालों का भी देखा है, तो मैं तो वही बात करता हूँ जो मैंने खुद देखा है, बताई बात नहीं। तो बढ़ते हैं एक, और कुछ आप पूछना चाहते हैं?
1: नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जरूर
1: कह दूँ?
0: हाँ, कह दो।
1: कि दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरी के देन हैं।
0: हाँ,
1: दुनिया में लाखों पेड़ों गिलहरी के देन है, वे खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाते हैं। आप भी अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे फल जरूर देंगे।

भारत उत्तम नगर से रिंकू पाजी इसमें लिखा गया है और उन्होंने कहा कि दिया और बत्ती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग कोई तीसरा ही लगाता है। तो ये भी थोड़ा से हम लोग यहाँ सुना देते हैं और इसी प्रकार से कोई अगर अच्छा संदेश है आपको तो ज़रूर और भेजना, ताकि रोज हम सबको कम से कम थोड़ा से तो हंसना है। और राजेंद्र जी, ये तीर्थ स्थल जो आप कह रहे हैं उसके वृतांत जो सुना रहे, तो आगे क्या है?

0: बढ़ते हैं आगे। मोक्ष स्थली सोरो जहाँ पृथ्वी का उद्धार भगवान ने बराहा रूप में किया, सुधांशु निर्भय पृथ्वी के पुनर्संस्थापन के उपरांत पृथ्वी को ज्ञानोपदेश एवं अपनी बराहा रूपी देह का विसर्जन परमात्मा ने जिस पुण्य क्षेत्र में किया वह स्थान आज भी सोरो यानी कि सुकुर क्षेत्र में नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा के पुण्य प्रभाव से इस स्थान को विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। बात उस समय की है जब दैत्यराज हिरणाक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया, तब उसके उद्धार हेतु भगवान ने ब्रह्मा रूप में लीला करने का निश्चय किया। पृथ्वी के पुनर्संस्थापक के उपरांत पृथ्वी को ज्ञानोपदेश एवं अपनी ब्रह्मा रूपी देह का विसर्जन परमात्मा ने जिस पुण्य क्षेत्र में किया वह स्थान आज भी सोरो यानी सुकुर क्षेत्र के नाम से
1: सुकुर क्षेत्र क्षेत्र जैसे कि आप सुना रहे हैं भारत के कहीं कहां
0: उत्तर प्रदेश जी। सोरो के नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा के पुण्य प्रभाव से इस स्थान को विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। भगवान श्री ब्रह्मा के देह विसर्जन के प्रभाव के कारण यहाँ स्थित हरिपदी गंगा में मृतक की अस्थियाँ प्रभाव के तीसरे दिन ही जल में विलीन हो जाती है।
1: यानी कि जो अपना अस्थियाँ विसर्जन करने को जाते हैं
0: हाँ
1: तो वहाँ छोड़ते हैं
0: तीन दिन में विलीन हो जाती यानी कि समाप्त हो जाती
1: एकदम से।
0: हाँ, विश्व में कोई दूसरा स्थान ऐसा स्थल नहीं है जहाँ अस्थि गलती हो। अगर आप हड्डियां उसमें डाल देंगे तो वहाँ गल जाएगी।
1: गल जाता।
0: भगीरथी गंगा यद्यपि हम सभी के लिए परम पुण्य प्रदा है किंतु उसके जल में भी अस्थि गल नहीं पाती। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद इस जल की इस विशेषता के रहस्य का पता नहीं लग पाए हैं। यह वही सुकुर क्षेत्र है जो कालांतर में ब्रह्मा अवतार के रूप में कोकामुख कुब्जा भ्रक तीर्थ के नाम से विख्यात है।
1: तो राजेंद्र जी, ऐसा देखा जाए कि हम सब अभी ये लगता है कि हम गंगा तीर्थ करने को जाते थे और ज़्यादा तादाद में लोग उसी के चिंतन करते, पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि और भी तीर्थ स्थानों है भारत में। गोमती नदी।
0: हाँ, गोमती नदी है
1: वो भी इसी प्रकार का तीर्थ स्थान है।
0: हाँ, गंगेश यमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जलस्मिन संधिमन कुरु, ये सात नदियों में से गोमती नदी नहीं आती है। गोमती नदी अलग में जाती है, लेकिन नदियाँ बहुत सारी भारत में हैं और लखनऊ शहर से होते हुए भी गोमती नदी बहती है। तो पहले ज़माने में लोग जब शहर बनाते थे तो नदी के बगल में बनाते थे, इसलिए जैसे जो भी शहर है बड़े बड़े आप देखेंगे तो नदियों के किनारे में बने हुए हैं
1: सभी शहर और नदियों के किनारे।
0: हाँ, नदी पानी रहता था तो पानी की कोई कमी ना रहे।
1: हाँ,
0: इसलिए नदी होना जरूरी था।
1: ऐसा।
0: हाँ, इसलिए नदियों के किनारे बना था।

0: जैसे कि श्री बरहा दर्शन, इस क्षेत्र के प्रधान मंदिर की बरहा मठ का 17वीं शताब्दी में नेपाल नरेश ने जीर्णोद्धार कराया था। इस मठ में प्रधान देव श्री क्षेत्राधीश बरहा अपने श्वेत वर्ण विग्रह में मां लक्ष्मी के साथ सुशोभित है। साथ ही इसके प्रांगण में भगवान के विराट रूप का अलौकिक दर्शन भी होता है। श्री हरि गंगा क्षेत्राधीश श्री बरहा मंदिर के बिल्कुल सामने प्रतिष्ठित श्री हरि गंगा का विशाल कुंड मृत आत्माओं की मुक्ति के साक्षात पर्व के रूप में विद्यमान है। यह वही पवित्र कुंड है जहां विसर्जित अस्थियां 3 दिन के अंदर जल में विलीन हो जाती है। श्री गर्दवट तीर्थ, इस पवित्र भूमि के अंदर ही गर्दवट तीर्थ है जहाँ आदिकालीन विश्व का एकमात्र प्राचीनतम गर्दवट विद्यमान है।
1: तो राजेंद्र जी, ये जल किसी और तरीका के जल है उसमें ताकि वो मिल जाता है अस्थिया सब कुछ?
0: नहीं, इस जल में ऐसी विशेषता है कुछ कि जो हड्डी डालने से वहाँ पे 3 दिन के अंदर
1: वो गल जाता है।
0: तो ऐसी कुछ जल में कुछ विशेषता है, वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए।
1: वैज्ञानिक कहते वेतन स्काप।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: आगे बढ़ते हैं एक सुंदर सा
1: गीत की ओर
0: और इसके बाद हम
1: फिर आगे ये
0: जारी रहेगा।
1: तीर्थ स्थल के बारे में और जानकारी हम सबको जरूर प्राप्त होने वाला है।
0: जरूर।

0: नमो नमो ही शंकरा।
1: शंकरा तो नमो नमो रहे ही, आप कैसे रहे?
2: हम अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। शांता जी, क्या आज अपने पिटारा से भर के लाए हैं?
3: तो जो आपने जो मौका दी है संजय जी, राजेंद्र जी, तो मैं ये कहूँगी कि करना सीखो, करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से वही उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दूँ कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, वो तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है।
2: बंदे, तू खुद ही ऑन करता है और तू खुद ही ऑफ करता है। सुनने वालों, ये संदेश ये समझने के बात हो जाता है शांता जी, क्योंकि लोग अभी हम जरूर उसके बारे में और चर्चा करेंगे, पर राजेंद्र जी, हमारा कार्यक्रम का और जो घड़ी जो होता है ना, वो चल रहा है और हम लोगों का संदेश आज जरूर ये तीर्थ स्थान का बारे में और सुनाना है। और अभी हम सब अगले सुंदर गीत भी चलाने वाले हैं।
0: हाँ, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आगे का जो हमारा कार्यक्रम है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसके बाद जरूर चलाएं। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वृक्षों में अभय भट्ट, यानी अभय भट्ट प्रयाग में है, अभय भट्ट सिद्ध भट्ट उज्जैन में है, बंसी भट्ट वृंदावन में है, एवं गंधर्व भट्ट सुकूर क्षेत्र के सोरों में माने गए हैं। इसी गंधर्व वट क्षेत्र के वर्तमान प्रांगण में श्री विदया का यांत्रिक स्वरूप संभवतः विश्व की एकमात्र कृति है। कूर्म पृष्ठिया श्री यंत्र का यह स्वरूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसकी प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य जी ने की थी। व्यवस्था तीर्थ यह वह स्थान है जहां भगवान सूर्य ने सहस्त्रों वर्ष तप किया था। उनके इस कृत्य से अति प्रसन्न होकर प्रभु ने दर्शन दिए एवं उनकी इच्छा के अनुसार गीता का उपदेश सर्वप्रथम दिया। बहुत कम विद्वान इस तथ्य से परिचित होंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता उपदेश से काफ़ी पूर्व श्री गीता रहस्य को श्री हरि ने इसी सकुर क्षेत्र में भगवान सूर्य को समझाया था। सोमतीर्थ भगवान चंद्रदेव ने अपने साप से मुक्त होने के लिए इस पावन धरा पर सहस्त्रों वर्ष कभी सिरोमुख कभी अधोमुख नाना प्रकार से तपस्या की थी, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल साप मुक्त किया वरन या वर भी दिया कि हे चंद्र, तुम्हारी साधना के प्रभाव से वर्ष में दो दिन यहाँ का जल दूध का रूप ले लेगा एवं जग विख्यात होगा। आज भी चैत्र शुक्ल नवमी को यहाँ स्थित कूप का जल दूध का रूप ले लेता है। तुलसी स्मारक मंदिर विश्व को रामचरितमानस की अनुकंप कृति देने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म यही सुकुर क्षेत्र में हुआ एवं उनकी शिक्षा दीक्षा भी यही श्री नरसिंह पाठशाला में संपन्न हुई। आज श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी एवं उनके गुरु श्री नरहरि जी के वंशज जीवित हैं। तुलसीदास जी के मकान में जीर्णोविशेष आज भी विद्यमान हैं।
2: तो राजेंद्र जी, अभी तक वो स्थान अभी तीर्थ स्थान की तरह बनाया हो?
0: हाँ, हरिपदी गंगा के मध्य सन 1945 में तत्कालीन जिलाधीश द्वारा स्थापित गोस्वामी श्री सुंदर प्रतिमा उनके स्मारक के रूप में आज भी विद्यमान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र, उनकी 84 बैठकों में से 33वीं बैठक इसी पावन भूमि पर स्थित है।
2: तो राजेंद्र जी, आपने तो हिंदी में बोल दिया कि केंद्र का मतलब,
0: केंद्र मतलब जैसे
2: यानी कितना टुकड़ा,
0: बीच का स्थान, केंद्र यानी जैसे भारत का बीच का, बीच का जगह है, केंद्र है।
2: हाँ,
0: मध्य प्रदेश।
2: मध्य प्रदेश,
0: तो वैसे ही उस जगह का जो केंद्र है वो है।
2: अच्छा।
0: हाँ, तो इसके आगे बढ़ते, यहाँ बिट्ठुल नाथ जी की व गुसाई जी की भी बैठक विद्यमान है। गोसाई जी यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं और जो सेवा आज भी होती है वृंदावन में वो गोसाइयों के पास है और बिट्ठुलनाथ का वहाँ पे मंदिर भी है
2: वहाँ वृंदावन में।
0: हाँ।
2: अच्छा, मैंने सुना है वृंदावन में एक मंदिर भी है जिसको कहते हैं कि पगला बाबा,
0: पगला बाबा मंदिर है ना, खूब बड़ा मंदिर है,
2: बहुत बड़ा, सात मंजिल का,
0: हाँ,
2: संगमरमर का,
0: और एक भूत मंदिर भी।
2: कौन सा मंदिर?
0: भूत मंदिर।
2: भूत मंदिर,
0: हाँ, भूतों ने बनाया था रात में।
2: अच्छा,
0: एक ही रात में बना लिया था और बहुत बड़ा बन गया था, फिर बाद में उसको तोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें जहाज ना टकरा जाए ऊपर।
2: अच्छा,
0: आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर और इसके बाद बात करेंगे।

0: पहले कहावत है ना कि ना पहले हमारे पास 4G होते थे ना 3G होते थे, बस पिताजी होते थे और जहां तनी से कुछ गड़बड़ करो गुरुजी होते थे और बस
1: यहीं तक जी
0: यहीं जी थे, आगे कोई जी नहीं थे। और देखो ये इंटरनेट द्वारा भारत में कितना और शुद्ध से ये कार्यक्रम ये पूरा वहां पर सुना जा सकता है। हमारा जो आज का विषय है तीर्थ स्थान, जो हम इस समय उसके बारे में वृतांत को सुना रहे हैं और लोग सुन करके इस पे जरूर इस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोग को तीर्थ को करना है, लोग को अच्छा लगता है ऐसा तीर्थ के संदेश सुनने को।
1: संदेश आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो पहले सोरो शुकर क्षेत्र के निकट ही गंगा बहती थी, किंतु अब गंगा दूर हट गई। पुरानी धारा के तट पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। जो पुरानी धारा थी उसके नज़दीक बहुत सारे मंदिर आज भी स्थित हैं, लेकिन अभी थोड़ा गंगा दूर चली गई। यह भूमि भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान ब्रह्मा की मोक्ष भूमि एवं श्री राम चरित मानस के रचनाकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी और अष्टछाप के कवि नंददास जी की जन्मभूमि भी है। इतने विशाल विशाल लोगों की ये भूमियाँ हैं, तो क्यों ना इन भूमि के लोगों के लिए एक सुंदर सा नगमा चलाया जाए।
0: क्योंकि ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों सुनने वालों जो इस समय ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। तो ज़्यादा सोच वोच ना करो, क्योंकि अपना खुशियाँ हमें जो खुशियाँ मिलने वाले हैं वो हमारे पास रहे और हम सब ये आनंद के ज़िंदगी और लेकर चलते रहे। हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं।
1: बहुत विशाल गीत सुनाने वाले हैं।
0: बहुत विशाल, बिल्कुल एकदम सिरिनामी भाषा में, सिरिनामी भाषा हमारा जो आपने और कहने लगे है राजेंद्र जी, आप जैसे और संस्कृत का हॉलैंड में जो हम सबको और अपना हमारे गुरु है संस्कृत के, तो ऐसे आपको अच्छा भी लगता है हमारा सरनामी हिंदुस्तानी? हाँ, बात करने को
1: बहुत अच्छा लगता है।
2: बहुत अच्छा है, कारण कि ना हमारे सरनामी भाषा जो है ना, यहाँ के गोरे भी सीख के है।
1: हाँ,
2: यहाँ के गोरे जब बाजार जाओगे तो वे कहेगा हमारा हिंदुस्तानी भाषा में कहेगा, अगर आप भी जाओगे वहाँ गोश्त खरीदने ना। एक बार ऐसे वहाँ पे एक दोस्त के साथ गई, तो वो भीतर गए दुकान में, तो वो कहने लगा कि मुझे ये वाला चाहिए। तो वो मारोकान वाला जो कस्टम जो वहाँ बेचता था ना, वो कहा छोटा छोटा कद्दू।
0: राजेंद्र जी थोड़ा से कुछ और मन था कहने को,
1: जरूर
0: कह दो, क्योंकि अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छे भावना मन को हल्का करती है। बस आप गीत चला दो,
1: जरूर, फिर मन और ज्यादा हल्का हो जाएगा।

0: तो भी न्याय के मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पाए। यानी कि जो अगर न्याय है, सत्य का रास्ता है, तो उससे पग यानी कि पैर डिगने नहीं पाए, हिलता नहीं है। बहुत ही अच्छा संदेश इस भगत भजन से हमको देखने को सुनने को मिला। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु नरसिंह दास जी से प्रथम बार यहीं पर सुनी थी। नंददास जी द्वारा स्थापित बलदेव का श्यामायन मंदिर सोरो शुकुर क्षेत्र के प्राचीन मंदिर हैं। पौराणिक गुटवट यहाँ स्थित है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 23वीं बैठक है। यहाँ हरि की पौड़ी में विसर्जित की गई अस्थियाँ 3 दिन के अंत में रेणु रूप धारण कर लेती है, ऐसा आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ भगवान बारहा का विशाल प्राचीन मंदिर है। मार्ग शीर्ष मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। मंगशीर यानी कि कार्तिक के बाद जो महीना आता है, कौन सा महीना रहेगा? नवंबर।
1: नवंबर
0: में तो यहाँ का प्रसिद्ध मेला वहाँ पे लगता है। अब बात करते हैं पुरावशेष की। भागीरथी गंगा नदी के तट पर एक प्राचीन स्तूप के खंडहर भी मिले हैं, जिनमें सीताराम के नाम से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस

0: थी इस प्रकार थी, और बहुत सारे लोग तो उत्सुक होंगे जाने के लिए और वहाँ देखने के लिए। अब संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: कहना तो बहुत चाहता हूँ, पर क्या कहूँ राजेंद्र जी,
0: कुछ तो कहो, कुछ
1: सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है कहलाता है कि सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तो शांता जी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ तैयारियाँ कर चुके हैं कहने के लिए।
2: तो जैसे आपने अभी पढ़ा ना, आपने बताया कि हर बात थोड़ा सा स्वयं कभी उसको भी,
1: मैंने ये तो नहीं कहा ना,
2: बहुत महत्व देता है, तो इसलिए मैं भी वेट करती हूँ, गौरती हूँ कि कब मेरी पारी आवे तो मेरी बारी भी आएगी ना। कहते हैं
1: पारी
2: संतोष
1: आवे,
2: करना संतोष
1: पारी
2: करना।
1: आवे तो मेरी बारी भी आ गया। तो शांता जी आपके सुनने के लिए लोग, और यानी कि अभी टेलीफोन भी आए थे श्रीमती राजकुमारी जी, जो कह रहे थे कि सही साथियों के साथ ये कार्यक्रम को सुनते, तो बहुत बहुत सभी को हार्दिक से धन्यवाद देता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा भी ऐसे इस प्रकार से इन बातों को सुन करके हौसला और बढ़ते हैं, और हम सब सेवा के रास्ते के ओर बढ़ते हैं। निकल चाहे हवा है या और बारिश है, हम सब कोशिश करेंगे और भी, और इसी प्रकार से अच्छा अच्छा संदेश अपने सभी सुनने वालों के लिए लेकर के यहाँ उपस्थित होने के। तो शांता जी, आप पिटारा से अपने क्या छोड़ने वाले हैं?
2: ऐसे बात है कि जिंदगी ने पूछा सपना से, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है,
1: जिंदगी ने सपना से पूछ लिया,
2: जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, तो हकीकत ने बोली बंद आँखों में जो अपना होता है, सुनिए, बंद आँखों में जो अपना होता है, खुली आँखों में वही सपना होता है।
1: खुली आँखों में, बस शांता जी ने जैसे सुनाया। राजेंद्र जी, क्या बात है कि आज हमारे सूरीनाम के, क्यों हम पहले बच्चे की ओर बढ़ते हैं कुछ?
0: हाँ, हम बहुत दिनों से बच्चों का जो बच्चे मन के सच्चे वाला गीत नहीं सुने और लोगों को नहीं सुनाए, तो क्यों ना हम आज उसकी ओर बढ़ें, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गाना रहेगा वो सूरीनाम हमारा प्यारा देश, और इसके बाद जिस
1: तो हमारे सुनने वालों भी अभये से तैयार हो गया कि हमारा सूरीनाम भी अभी आने वाले है।
0: हाँ,
1: पर बच्चों के लिए कुछ चला
0: बच्चों
1: देते
0: के
1: हैं।
0: लिए सबसे पहले हम चलाएंगे, इसके बाद दूसरे ओर बढ़ेंगे।

0: बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में जो होता है वो बोल देते हैं, किसी भी प्रकार का मन में कुछ नहीं रखते, इसलिए कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि झूठ जानते नहीं, झूठ तो बाद में सीखा जाता है इस दुनिया में, इसलिए लोग बाद में बोलते हैं, लेकिन जब बच्चे रहते हैं तो। संजय जी, आपने कभी झूठ तो नहीं बोला जब आप बच्चे थे?
1: आपने ऐसा सवाल कर दिया जहाँ हमें भी अब जो इस जवाब देना है तो बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये है कि आपने कभी झूठ तो नहीं बोला। तो दोस्तों, ये इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि छोटा मैं तो कुछ ना कुछ किए होंगे। शांता जी, बगल पड़ोसी के आम के पेड़ से अपना घर का आम छोड़ करके बगल का आम और पसंद होते थे, और ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसे कि कभी काल के छोटा पे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाते हैं, पर मन के सो तो सच्चे होते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ, ये तो है,
1: मन का तो सच्चे होते थे, और अपने आप को तो बचाना पड़ता था क्योंकि गलतियां तो हो ही जाते थे। शांता जी, आपने कभी कुछ गलती की है छोटे पे?
2: जैसे सभी बच्चे करते, शरारत हरारत सब कुछ होता है। हाँ, हम भी वैसे ही पड़ोस के पेड़ पे चल जाते थे,
1: चढ़ जाते थे।
2: हाँ,
1: चढ़ गए
2: सिर बोंकी, जाने
1: सिर बोंकी। आप राजेंद्र जी, आपको पता सिर बोंकी क्या है?
0: हम न जाने लम्मान सिर बोंकी का रकम रहे,
1: नहीं जानते।
2: एक फल होता है।
0: ओ, सिर बोंकी एक फल रहे।
1: हाँ। एक फल होता है। फल तो प्रयोग होता है, पर उसका लकड़ियों को बहुत लोग पसंद करते थे जलाने को।
2: अच्छा।
1: चूल्हा जलाते थे ना, तो सिरबोंकी का लकड़ी बहुत अच्छा होते थे चूल्हा जलाने।
2: और छोटा जाने पहले कोई करोस पाप रहा ना।
1: हाँ जी।
2: सैकर शुक्र।
1: हाँ।
2: ब्राइन सैकर, तो वो सब हम चुपके से जाकर लेकर खाते थे।
1: चोरी भी किया है।
2: मेरे दो भाई और मैं तीन जने मिलकर हम जाकर लेकर खाते थे। मम्मी तो मना करती थी क्योंकि वो तो नाश्ता थे ना सुबह के टाइम में।

0: यहाँ ये भी कहा जाता कि जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। तो राजेंद्र जी, आप अगर हम सब जो इस समय अगोर रहे हैं,
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप अपने बारे में बताए, हमने अपने बारे में बताया, अब राजेंद्र के बाद
0: आपको तो कहना ही पड़ेगा।
2: हाँ, हम जब बच्चे थे, नहीं हम तो अभी भी बच्चे ही हैं। अच्छा। आप लोगों के सामने तो आप देख ही रहे हो कि हम एकदम दूसरे प्रकार के बच्चे रहे। और जब बचपन में हम लोग भी सेब दूसरे के तोड़ने जाते थे, हमारे यहाँ तो सेब बहुत होता है, और प्लम है, सेब है, नारंगी है, नारंगी हम दूसरे के टपा देते थे रात को और खीरा और इस प्रकार का जो तुरंत खाने वाली चीज़ होती थी उसका चोरी भी नहीं माना जाता था, तो इसलिए कहते थे कि उस चीज़ का कोई चोरी नहीं माना जाता था, आप ऐसे करके खा सकते थे। तो हमने उसका आनंद लिया बचपन में, तो अगर नहीं लिया होता तो बचपन तो फीका हो जाता, इसलिए अच्छा ही रहा। और गंगाराम पंडित जी ने तो अपने बहुत सारी बात बताई बचपन की, वो जो सुनी रहे प्रोग्राम, तो अगली बार प्रोग्राम में वो अपना शेयर करेंगे।
0: जरूर, वो जरूरी कार्यक्रम में शेयर करेंगे कि अपना बचपना उन्हें, क्योंकि अभी तो बस कुछ ज्यादा अवस्था के नहीं है, तो जरूर अपना प्रोग्राम में शेयर कर सकता
2: जरूर,
0: है
2: जरूर।
0: क्योंकि ये मत कहना राजेंद्र जी, दो चीज पूछना कभी नहीं है यहाँ हॉलैंड में, अलाउड नहीं किया जाता है। और वो होता है, पहला होता है किसी से उनका आयु ना पूछे, और दूसरा उनका वजन ना पूछे, ऐसा क्यों है?
1: और तीसरा है कोई व्यक्ति जो कमा रहे ना उसका आमदनी ना पूछना,
0: आमदनी ना पूछना। हमारा वक्त पे ध्यान देना है, तो
2: वक्त पे ध्यान है। और बहुत दिनों से हमने सूरीनाम हमारा प्यारा देश जो गाना है वो
0: चला दो,
2: नहीं सुनाया, तो उसका तुरंत जल्दी से उसको सुनाएंगे।
0: हाँ, सन्नामे में तो नहीं है, अनाउंस कर दो उसके। कैसे
2: सूरीनाम?

0: सूरीनाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने से इनकार नहीं। संजय जी आप
1: बड़ा सुंदर गीत आज फिर चला दिए राजेंद्र जी, और मन एकदम खुश हो गया है। और बस जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायत है वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट होता है। दोस्तों हम सब आज जो हमारा संदेश जो कपूर के अंतर्गत प्रयोग करने से और उनका महत्व जो हम सब के लिए रखा गया और ख़ास करके जो तीर्थ स्थान जिन्होंने राजेंद्र जी ने आज हम सब के सुनाए, तो ज़रूर हमारा समय आने पे ज़रूर हम उड़ीसा स्थानों को ज़रूर जाए और उनके दर्शन करें। आगे का कार्यक्रम राजेंद्र जी आप क्या रखने वाले हैं?
0: आगे का जो कार्यक्रम है हमारा यही है कि लागी छूटे ना सनम।

प्यार किया तो करके निभाना, लाख समझौता कर लो अगर विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, लाख कोशिश कर लो अगर आत्मविश्वास नहीं तो जीत नहीं। इसी वाणी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए, जो आप इतने बड़े तादाद में होकर सुनते हैं प्रोग्राम को। हम आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए और स्वीकार कर लिए। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

दूर हूँ फिर भी दिल के करीब। हम लोग तो बहुत दूर बैठे हैं और रेडियो सुनने वाले तो पूरा देश दुनिया में सुन रहे हैं, लेकिन हम दूर हैं लेकिन फिर भी दिल के करीब हैं। तो इसी से मैंने पकड़ा यहाँ से कि क्यों ना यहीं पे पहुँच दिया जाए, और दूर है लेकिन नज़दीक भी है। तो फावन हिंदुस्तानी रेडियो को जो हमारा प्रोग्राम सुनने वाले लोग हैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। फिर मिलेंगे इसी वक्त अगली बार इसी समय इसी बार को। तब तक के लिए मेरा यानी राजेंद्र सिंह का तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है, और जितने बैलर्स जो फ़ोन किए सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है, जिन्होंने व्हाट्सएप बरख भेजे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। आशा यही है कि अगले सप्ताह जरूर आपके साथ और मिलन होगा हमारे साथ, और कार्यक्रम में सहयोग देने वाला शांता खेमई जी और हमारे पैनल के पीछे बैठे हुए राजेंद्र सिंह जी। मैं हूं आपका सेवक संजय, नमस्कार करता हूं और फिर मिलेंगे।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्रेस रेडियो पर अनतिलक उक्त बिलाइस्त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बतंग, जहां पर भी जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो मैथिली लश्तर प्लेजीर के साथ। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो या एक इवेंट ऑर्गेनाइजर तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आज श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत, सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, अब मात पर हम लोग बनाकर जितने बार आप चाहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलटाइडेंस कंटोर यूरो अपने 07-362-2047 या तो आप तार करें अपने 07-362-2077 पर। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो के लिए फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-362-2047 पर या तो 07-362-2077 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा भाग हमारे सरनामी संगीत का, और वो है कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, पुराने जमाने के महान गायक IDR 50-60-70-80 मैस्त्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे आ जाओ जाने मन, गीतों से मैं तुझे बुलाता हूँ। अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मैस्त्रो हफीज खान वाहिद हुसैन विथ हिज मस्ताना ऑर्केस्ट्रा। एंजॉय।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडेस का एडीआर 50, 60, 70, 80 मैस्ट्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह, म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय हफीज खान वाहिद हुसैन विद हिज मस्ताना ऑर्केस्ट्रा। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं एक अति सुंदर दुएत है, तो ये हेले bekende en beroemde zangers en zangeres uit de jaren 70-80. The man with the golden voice from Holland. Talet Mahmoud Kiawazmi, Kia Gatata. Wim Demri en Gerda Sukram Milke sunate hai aap sabhi ko. गोरी चलो ना हंस की चाल, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

इस सेवा में पेश किया गया गाने वाला था महान गायक आईडीआर 70-80 विम दमरी और खेरदा सुखराम। एक और महान गायक आप सुनेंगे हमारे सूरीनाम देश का, जो काफी मशहूर हुआ था दादा हेमंत कुमार के आवाज में, और वो सुनाएंगे आप सभी को बेकरार करके। महान गायक आईडीआर 50-60-70 दौलत जुमराती।

सूरीनाम देश का दादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में गाने वाला डिग्रेट जुमराती दौलत जुमराती। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को दो मशहूर गाने वाले हमारे हॉलैंड देश का आईडीआर 70, 80, 90 द ग्रेट गाने वाली सिल्वा के माय से बहुत ही मशहूर हो गई थी और बाद में ढेर सारे सुपरहिट सॉन्ग्स गाए। स्टार्ट में हर करियर में सेमी क्लासिकल ग्रुप फॉर्मासी Ishara uit Den Haag, later gezongen voor de Indian Diamonds, Mastana, Pandero, etc. etc. En ook heel veel live shows gegeven. De Melody Queen uit de jaren 70-80 van Nederland, Indra Ramcharan, Sat de Rahahe, Mashure Ganewala, begonnen op de drums bij Mastana Orchestra, later doorgebroken in de Indian Diamonds. De great singer Shahid Wahid Hussein. Deze twee op hun best. Milke Sunte Hai, Jani Chaman.

ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। गाने वाले थे शहीद वाहिद हुसैन और इंदिरा रामशरण, म्यूजिक बाय मस्ताना ऑर्केस्ट्रा। दिस टू ऑप्शन बेस्ट आई डी आर 80। समय पर प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम। और आगे देखा जाए, कुछ बदलाव लाऊंगा प्रोग्राम में और वारा के मुताबिक कुछ नए नए आवाजें और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो जरा दिल थाम के बैठिए हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आ रहे हैं आप सभी के खिदमत में इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी का बिल्कुल नया सॉन्ग। साथ दे रहा है इस जमाने का जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द मैन विद द ब्यूटीफुल वॉइस द ग्रेट जुबिन नौटियाल। ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान को गाए हैं। म्यूजिक कंपोज बाय जावेद मोहसिन एंड द ब्यूटीफुल सॉन्ग इज रिटन बाय रश्मि विराग। पास तेरे मैं आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

में पेश किया गया और गाने वाले थे जूबी नौटियाल और श्रेया घोषाल। जावेद मोहसिन के साज और संगीत पर लेखक रश्मि विराक के अल्फाजे। अगला बयान तू है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, कुछ नए आवाजें आप सुनेंगे। इस जमाने का मशहूर गाने वाला दर्शन रवाल और प्रीकीर्ति गिरी ने मिलके गाए हैं ये अति सुंदर बयान गुरप्रीत साइनी के अल्फाजे। म्यूजिक कंपोज बाय दर्शन रवाल और लीजो जॉर्ज। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय सुनने वालों के नाम।

0: तू है। इस जमाने का मशहूर गायक दर्शन रवाल और प्रकृति गिरी के आवाजों में ये अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना। गुरप्रीत सैनी के अल्फाजे, म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय दर्शन रवाल एंड लीजो जॉर्ज। तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं। पुराने जमाने और कुछ इस जमाने के मशहूर मशहूर लोगों, कुछ विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों ने मनुष्य, मेंस हेल्थ, इंसानियत के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। ये आशा उम्मीद लेकर कि कुछ ना कुछ तो इन बातों से हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था श्री मार्कस ऑरेलियस। हे वसन रोमेंस कैसर एंड लीव दन 121 tot 180 voor Christus। और मार्कस ऑरेलियस ने कहा है मनुष्य के बारे में, यारो की नर्गंस कान एन मेंस सिख रुस्तगर एन ऑनगस्टोर्डर terugtrekken dan in zijn eigen ziel, zeebad. Nog eentje van Marcus Aurelius, purane zamanica Romeins keizer, 121 tot 180 voor Christus. O Marcus Aurelius, nekaha hai manusje ke bare mein aruki, de mens die in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum. Mahagyani Sri Albert Einstein, ook de uitvinder van de atoombom, leefde van 1879 tot 1955 en hij was een Duits-Amerikaans natuurkundige. Or Albert Einstein, ik ha hem een oesje barmearuki, een van de sterkste motieven die de mens naar kunst en wetenschap leidde, is de ontsnapping aan het alledaagse. महाज्ञानी श्री बुधा भगवान, बुद्ध भगवान जी ने कुछ कहा है भी, ढेर बातें कहे हैं इंसानियत के बारे में। इन फंसें सीतात श्री बुधा है वॉज एन स्पिरिचुअल लीडर, खबोरन और सिद्धार्थ गौतम एंड लीव द फन 370 tot 450 voor Christus। बुद्ध भगवान ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो की, सोअल्स द अकर बदोर्फन वॉर्ट डोर ऑनक्रोइट सो द मेन्स डोर सैन बखेरतन। सोचने वाला बात। पॉल कुल्हो है इस ब्राजीलियन स्क्राइवर, खबोर 1947। और पाउलो कुल्हो ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो की, अस हेच लुक om alleen in het heden te leven, zul je een gelukkig mens zijn. Claude Avelin, hij was een Frans schrijver, uitgever en dichter en ook tevens PS van Efgen af Tsine, leefde van 1901 tot 1992. Ook Claude Avelin, neke hae manusje kebarmearuki, de mens die vrijheid opeist, denk aan geluk. Jean-Paul Sartre, hij was een Frans schrijver, filosoof en Nobelprijswinnaar literatuur 1964, leefde van 1905 tot 1980. Ook Jean-Paul Sartre, nekahai manusje kebarme aroki, de mens is veroordeeld om vrij te zijn. Erich Fromm, hij was een Duits-Amerikaans filosoof en psycholoog, leefde van 1900 tot 1980. Erich Fromm, nekahai manusje kebarme aroki, de moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen. Johan Deisne, Vlaams schrijver, leefde van 1912 tot 1978. Oh, Johan Deisne, nekahae manusje kebarmearuki, Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan, want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. En de laatste van vandaag, eentje nog van Marcus Aurelius Punanis de Manica, Romeins keizer, leefde van 121 tot 180 voor Christus. Marcus Aurelius Nekahahe Manusje Kibarimiaruki. Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt. Daar komt die overredende stem vandaan. Daar ligt de kern van het leven. Daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelf. तुम्हें प्रिय श्रोताओं, अभी आप कुछ कहावतें उदाहरण सुना जो मनुष्य मेंस हेत के बारे में जाता है. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ja, zo meer lekker in wat ik om aan het sunaya, ki kuch na kuch seek in wat we ze hem log zaroer seekhenge. Ik dan bertte hij program ke or aur agla bayan sunane ko ja rahe hai aap sabhi ko. महान गायक इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी श्री सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही है दीपाली साथे. म्यूजिक और अल्फाज है शबीर अहमद का. मिल के सुनते हैं खुदा तेरा भी है.
1: हाय.
2: Hey.
1: You know, देव, मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था.
2: बस कुछ दिन और.
1: तुम पहली बार मुझे छोड़ के गए हो.
2: I'll see you soon, okay?

0: De krachtige stofzuiger van Dyson beschikt nu ook over een dweilfunctie voor harde vloeren. De nieuwe roterende dweilborstel.
1: Het is een Arbeanisch rotanke sewa me pishkia gea goda tera bhi hai. De great Sonunigam aur beautiful gane wali Deepali साथे के मधुर आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना शबीर अहमद के साज और अल्फाजे। एक और मशहूर गाने वाली उभरती हुई कलाकारा जो काफी नाम कमा चुकी है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, कांजीलाल, अरुणिता कांजीलाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे कुछ कॉफर्ट सॉन्ग्स, जिसे आज फिर जीने की तमन्ना है और ढफली वाले।

तो दोस्त सुनाई आप सभी को इस जमाने के मशहूर गाने वाली उभरती हुई कलाकारा द ग्रेट अरुणिता कांजीलाओ। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द

तो दोस्तों कार्यक्रम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार नहीं होती कम्पोज बाय ब्रॉडर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैप त्यूनाश तलीफ है, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे सरनामी संगीत, एक से एक बेहतरीन गाने वाले हमारे सुरिनाम देश हॉलैंडियस का। बाद में कुछ छोटे छोटे बच्चे के सुपरहिट सॉन्ग्स आप सुनेंगे, फंसीफ ततमत फिर तीन यार डायरेक्ट फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, भारत का शान आप सुनेंगे और भारत के आने वाले संगीत के भविष्य आप सुनेंगे। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहाँ पर भी हो जिस साल में हो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को याद करते हैं, अपना ढेर सारे प्यार मोहब्बत आप सभी तक भेजते रहते हैं। रफी साहब।

गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का एक जबरदस्त गायक, बैठक गाना का गुरु, उस्तादों का उस्ताद, इंटरनेशनल कलाकार एंड मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, उस्ताद रॉबी उदित राम जी के मधुर आवाज में आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ एक अति सुंदर भजन के साथ कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो।

गायक हमारे सूरीनाम देश का उस्तादों का उस्ताद डिग्रेड श्री रॉबी उदित राम जी। अगला बयान एक नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का जो काफी नाम कमा चुका है सूरीनाम देश में और कुछ दिनों से हॉलैंड देश में आकर बस गया है। टैलेंटेड कलाकार सभी साज बजा लेता है और साथ ही साथ बड़े प्यार से गाता है भी। द ग्रेट सुजल उमराव बरसतिया में।

एकदम शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार और ग्रेट सिंगर फुल टैलेंटेड जबरदस्त गाता है और जबरदस्त बजाता है सुजल उमराव। अभी का और महान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार पंडित श्री कृष राम खेलावन जी के अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान कि सब दिन होता ना एक समान। पंडित श्री कृष राम खेलावन जी।

एक दम शाबाश शाबाश शाबाश लाइव रिकॉर्डिंग पंडित श्री कृष राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी चंद्र बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और ये कार्यक्रम आप सभी के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है डायरेक्ट फ्रॉम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो धनहा शहर से। अगला बयान एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का डेग्रेट शिवम राजाराम की मुद्दत से यही अरमान

आहे देन हाँ शहर से फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से एक और अति सुंदर बयान आप सुनने वाले हैं और लाते हैं हमारे सुरीनाम देश का द बैठक गाना चटनी क्वीन उस्तादिन मोती माला भोला सिंह अपन अंद्र तूर म्यूजिक बाय द वन एंड ओनली मैस्ट्रो ज्वाला.

Den Haag शहर का द लायन ऑफ बैठक गाना उस्तादों का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ एक दो नगमे मिला दिया है एक में ये महान उस्ताद की अयो ना हमारे नगरिया और पंग घट पे नजरिया न मरिए भैया क्या बात है वाह प्राउड ऑफ यू माय बॉय।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश उस्तार का उस्तार एंड लायन ऑफ बैट गाना हमारे देनाक्षर हॉलैंडीज का चैंपियन सिंगर द ग्रेट देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो जोर तोर से साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का बैठक गाना। अगला गाने वाली एक और महान गाने वाली है हमारे सुरीनाम देश के आईडीआर 70-80 चंद्रवती कंधाई जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे तू जाओ कहाँ मोरे राजा।

बैठक गाना मैस्ट्रो संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं यही तक था आज का इस पहला अध्याय हमारे सर्वनामी संगीत का। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन आप ही का, तो ये रेडियो स्टेशन है, आप ही का आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है। आफ्टर द ब्रेक कीप लिसनिंग, कहीं जाना मत।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है। शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है। और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जय दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता नहीं खतीन मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जी दोस्तों, एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जा दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी। फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमें चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाए इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और, ये बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का, ये निकाला हुआ गाना है, 1962 का है। जे फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से।
1: जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहीं तो इस शस्त का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी में, आप लोग के लिए चलते नेहा वैफन शस्तक में। जौहर महमूद इनकोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहा ट्विंस फैफन शस्तक में, आँखियों का नूर है तू।

जी हाँ दोस्तों, अंखियों का नूर है तू, अंखियों से दूर है तू, सुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। लेकिन 356 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं लेकिन 356 तक में जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा निकले फैंस तक में। और देखा जाए तो एक जोन गाना अब हम रखे में बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाए से कल्याण जी आनंद जी है, और वही जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मौज की सुनत काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

तौबा मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तर सस्त का जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को अगले गानों को मैंने चुन पे रख चुका हूँ। दम मारो दम, चलो हरे रामा हरे कृष्णा। जीना तमन सीना तमन ने काम किया है देव अनंत जीना तमन और आशा भोसले की आवाज़ से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

दोस्तों दम मारो दम, अभी आप सुन रहे थे दम मारो दम, और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो शंबा हो। चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिलके इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जी हाँ, रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पपिलहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पपिलहरी का ये डांस नंबर है, याद आ रहा है पपिलहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पपिलहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती, याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ, और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुकवार है, वीकेंड आ गए, रेड पुस हो या ब्लैक पुस हो, उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए, क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तू बल्ले बल्ले, दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोगों को सुनाते हैं। देखा जाए तो बोले तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपको सुनाते हैं बोले तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें, देखा जाए इसमें तो है कुछ और। हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा से कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जी हाँ दोस्तों, जाने जा ओ मेरी जाने जा इर्ष दे बिरमन। जी हाँ दोस्तों, चलो हम घड़े की तरफ देखते ही तो क्वाट फोर फिर है, इसका मतलब है हम दो गाने और चलाएंगे, उसके बाद न्यूज बयाम चलेगा और हमारा कोलेखा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कोलेखा, लेकिन एक ऐसा कोलेखा फिर से ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। और बोलो तारा रा रा दिलर मेहंदी, पंजाबी गाना है दोस्तों।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सो रहे थे, चलो हम चलते हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु हो और खुदा हाफिज हो। हर एक जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं देंस तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम बहुत विदाई लेंगे। देंस तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कोलेगा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो। म्यूजिक

जो तू मेरा हमदर्द है अभी आप सुन रहे थे, सुनने वाला फ्रॉम द मूवी विलेन से हमने पेश किए है और ये गीत खासकर कुमांग किए थे आयशा जी, तो उन्हीं के वास्ते हमने ये गीत चलाए हैं। अपना बना ले फ्रॉम द मूवी भेड़िया से आप सुनेंगे सुनने वालों।

भेड़िया है फिल्म का नाम सुनने वालों, और अभी आप सुन रहे थे अपना बना ले पिया, फिर भी मैं तुमको चाहूंगी फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड।

हाफ गर्लफ्रेंड है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। गदर 2 इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, चल तेरे इश्क में।

क्या मिले अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। शहजादा है फिल्म कराम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं छेड़खानियां।

0: फ्रॉम द मूवी शहजादा से हमने पेश किए हैं छेड़खानियाँ, और छेड़खानियाँ के बाद फ्रॉम द मूवी गदर टू से आप सुनेंगे मैं निकला गरी लेके।
1: मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल
3: दिला दीजिए ना।

मैं निकला गड्डी लेके, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी गदर टू, जुग जुग जियो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते दुपट्टा।

फ्रॉम द मूवी जुग जुग जियो से भी आप सुन रहे थे दुपट्टा, और दुपट्टा के बाद हम पेश करते हैं शो मी योर ठुमका फ्रॉम द मूवी तुम झूठी मैं मक्कार।

अभी आप सुन रहे थे शोमीद ठुमका, और ठुमका के बाद हम बढ़ चलते हैं झुमका की तरफ। वह झुमका

हुआ झुमका? फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसी फिल्म से हमने पेश की है वट झुमका, तुम झूठी मैं मक्कार। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं सुनने वालों, मैंने पी रखी है।

फ्रॉम द मूवी तो झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से हमने पेश किए है मैंने पी रखी है। टाइगर ट्री है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लेके प्रभु का नाम।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice day and take care of yourself. Till next time.

इस बार हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसी फिल्म से आप सुनेंगे वत झुमका।

What, Chumka? अभी आप सुन रहे थे What, Chumka? सुनने वालों, एक गीत है और वो गीत मैं हमेशा की तरह अपने हिस्से के प्रोग्राम में पेश करती हूँ। अगर वो गीत मैं नहीं पेश करती तो ऐसा लगता है कि मेरा प्रोग्राम कुछ अधूरा रह गया है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

फ्रॉम द मूवी शहजादा से हमने पेश की है। सुनने वालों, छेड़ खानियां भी आप सुन रहे थे। दुंगी है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते लुटपुट गया।

दुमकी से अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लुटपुट गया। एनिमल है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।

0: फ्रॉम द मूवी एनिमल से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, गदर 2 है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दिल झूम झूम गाए।
1: ये कामयाब होटल है, यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती।

झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम गाए भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी गदर 2 से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। एक और गीत हो जाए फ्रॉम द मूवी एनिमल से।

अभी आप सुन रहे थे सतरंगा फ्रॉम द मूवी एनिमल से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाते हैं, तुम क्या मिले।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हमने पेश की है आप सभी के वास्ते तुम क्या मिले। ब्रह्मास्त्र है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे केसरिया।

महाराष्ट्र यानी, क्षमा करना सुनने वालों, ब्रह्मास्त्र है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हमने पेश की है कि शरिया तेरा इश्क है पिया, भेड़िया भेड़िया से हम पेश करते हैं अपना बना ले पिया।

अपना बना ले पिया भी आप सुन रहे थे, फ्रॉम द मूवी भेड़िया से हमने पेश किए हैं। तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार।

तेरे प्यार में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार। जवान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चले यहाँ।

जवान है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किया है सुनने वालों चलिया। और चलिया के बाद पठान से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।

पिपी पिपी पिया अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सौदागर है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इलू इलू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सौदागर से हमने पेश किए है इलू इलू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास आपको सुनाने वाले थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गए, चांद का टुकड़ा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

चल

चांद का टुकड़ा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुन रहे थे आई एम वेरी वेरी सॉरी तेरा नाम भूल गई। गोरी का साजन, साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी।

कुदरत का है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना। ये प्रेम का जहा है हर किसने भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। अदा परसों शुक्रवार है और मई के, जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार है, मई के 8 तारीख हो गया। घर को देखता हूँ तो 4:02 बीत गया है और यहाँ से आरंभ होता है प्रोग्राम गीतों का संगम, जो परिवार के घर में दुख दुख में हम साथ देते हैं और जहाँ पर खुशियाँ है बहुत से बधाई पेश हो। मेरे सामने बैठा हुआ है साहेब अशरफ हुसैनी। पावन के टीम की ओर से आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। प्रोग्राम गीतों का संगम में अब से लेकर 4:30 बजे मिले जुले गीतों के साथ मैं आपका दिल बहलाऊंगा। उसके बाद 4:30-5 के अंदर आइटम बयान जो रहेगा शाम को वो है जो, हर एक गीत जो से शुरू होता है लगभग आधे घंटे तक मैं आपके लिए पेश करूंगा। सिर्फ आपको तार करना है 0 से 5 तक, 3-5-2-2-5 या 0 से 5 तक, 3-2-2-0-5 पर। पांच छह के बीच सितारों का सफर चलेगा और सितारों का सफर में मशहूर गायक, मशहूर कलाकार साहेब पद्मश्री मोहम्मद रफी के बारे में कुछ बातचीत होगा। मौसम के समाचार, फील्ड बरेख्ते, स्पोर्ट बरेख्ते, छोटे छोटे खबरें मैं आपको देता रहूंगा। 6 बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना। शुक्रवार है दोस्तों, तो आप जानते हैं हॉलैंड देश के सबसे बड़ा बाजार जो है हाग स्मारक खुला हुआ है। अगर आप बाजार पे चल रहे हो गए या बाजार जाना चाहते हो तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि अपन ऐखड़ों में जो है, जैसे कि आपका पोर्टमोनी, सोना चांदी, जितना सामान आपके पास है दोस्तों, सारा संभाल के रखना, इसलिए कि बाजार पर बहुत से लुटेरे साकर रोलर्स घूमता रहता है।

प्यार के बाद छोड़े दोस्तों, इन दिनों में कितना नेप अखेंत। जी हाँ, कहते हो सिपाही है लेकिन आपने घुस जाता है तो कुछ न कुछ लेकर जाता है। अगर किसी से आसपराक नहीं तो दरवाजा मत खोलना, खोरदेन हटा कर देख लेना। अगर आप आदमी को नहीं चीनते हो तो दरवाजा मत खोलना दोस्तों। हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। 9 CFO 3 5 2 8 2 8 फिर CFO हमारा तार का नंबर है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत दिल का, मोहब्बत दिल का सुकून है।

बट मोहब्बत दिल का सुकून है, यकीन कीजिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा उसी बात पर यकीन कीजिए। अब की बार मिस्टर उदित नारायण तैयार हो गया, पहला नशा। भैया राजकुमार लक्ष्मण आ गया स्टूडियो में दोस्तों, वादा था इंटरव्यू का और अभी कुछ चंद मिनट के बाद अभी उनका इंटरव्यू चलेगा इसी रेडियो स्टेशन फाह उनके जरिए।

आवाज सुनकर आपको पता चल गया होगा दोस्तों किस स्थिति में बैठा हुआ है श्रीमान राजकुमार लक्ष्मण। राम देसिया ध्यान हक का मशहूर गायक है दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है।

0: भैया लक्ष्मण, भैया राजकुमार, नमस्कार। फाहुन के स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ।
1: नमस्कार नमस्कार भाई जी, हर एक को मेरा सुनने वालों के नमस्कार कहते हैं, राम राम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सत श्री अकाल।
0: राजकुमार तू जाने है, आपको मालूम है, तू जाने है कि बहुत दिन से हम तो के सुनीला तो रेडियो में गाना गए है फाहुन में, जब फाहुन हुआ पर रहा।
1: सही बात है,
0: तो हुआ पर रिफ गए फिर तो मंदिर में कई बार देख ली है।
1: जी जी जी,
0: दस पुराना जान पहचान रंग में है।
1: बहुत बहुत।
0: मार हम सोची क्यों न कहने तो के मौका दी बंद, हर एक कलाकार के न मौका दीला।
1: सही,
0: एक स्पेशल प्रोग्राम चले है
1: जी।
0: हमारा आज के मेहमान तो आप आज हमारा मेहमान है रे, और एक दो बातचीत चलेगा आपसे
1: जी।
0: और वादा है, मैं इरादा करता हूँ, मुझे यकीन है कि जितना सवाल चलेगा आपको खुश रहेगा, और हम भी आपका सवाल भी खुशी से जनता के सामने
1: जी,
0: रखेंगे।
1: जी, जरूर जरूर।
0: तो भैया राजकुमार तू बताओ, तू सन्नाम में कहाँ के निवासी रहले?
1: हम हैली पहले जौन बोलता पारपासी इंदिरा गांधी ईसाई बातों,
0: या
1: पहले रहा पथवानिका। पथवानिका में एक जगह है हसना बोईदी, दनी वखरंत में,
0: दनी वखरंत
1: में, वहाँ पे हमार पैदाइश तो शहर में भाई, बाकी वहाँ जन्म जिंदगी बिताईली, वहाँ
0: हुए ज्यादा रहले,
1: तीन यार नहीं का तीन यार तलक
0: दसवां स्तू खले
1: खले इधर हम लोग।
0: मैं तू कब बरिस कर रहे जब भाई लोग फिर
1: जब इधर आई या बाजा शुरू कर बजा के
0: न जब हलांत आई तो
1: हलांत आई तो नहीं खाती नहीं आर के
0: नहीं मत तो सरना में शुरू कर ले बाजा बजा।
1: हाँ हम रही कोई फेरती नहीं आर के, हमारे पिताजी के बहुत शौक था वो म्यूजिक में, बाकी कभी ओके मौका ना लगल तो वो एक दोस्त के घर गए तो वो पाइस पदरिया की बजावे वाला हारमोनिया, पुरान हारमोनिया रहा, तो लाल घरे धरी बजाइस तो वो बजाए के चल जाए तो हम घरे बैठे तो हमारा अजीब भी जिंदा रहा।
0: अच्छा,
1: तो हम जब जल जाए तो जो चीज जो बजावे तो ही हम भी बजाए, सोची तो बजावत बजावत तो हमारा अजी सुने तो अजी हमारे संझा 5 बजे से नहाए धोई के बैठे चिलम लगावे, तो बोले लौंडे आओ, बोले बजाओ हम सुनी कौन चीज तो बजावे, तो बजाए बजाओ तो ऐसे गिनती हो तो फिल्मी गाना थोड़ा बहुत। तब हम लोग के घरे एगो नाटक रूप रहा तो आवा था नाटक उफन करे, तो उ जन नाटक में गनवा जोन गावे तो हम सुनी तो चल चल जाए तो गनवा हम सुनी कर बजाए के, और जोन बजाओ था एगो अच्छा कलाकार रहा मतनी लगावे लगल रहा ज़्यादा।
0: अच्छा,
1: तो लग जब नशा हो जाए तो ना जाए पावे तो ना ना आवे उफन करे, तो आदमी जो नाटक वाला रहा हमसे बोले भाई बोले आज से तू उफन करिए, तो उफन कर ली तो हमें देश बजावे के, तब हम 5-3 यार कैसे रह ली तो एक रोज हम मिले कि सब नाटक में बजवाए, तो वही रोज से दो नाटक में हम बजावे लगे।
0: बहुत बेस्ट, तू एक लग तो पलवार कलाकार है।
1: हमारे माई गायक रहा है, हमारे माई वो जो मफराव घिसे दुबे है।
0: हाँ हाँ,
1: नारी समाज वो सब के रहा, हमारे माई गाँव था, हमारे माई के नाम रहा राम दुलारी साधु।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो एगो ओकर भी एगो एल पी ही हम लोग काटे रही कुछ दिन हो गए, मोई मोई गाना मन भी है, तो हमारे माई तो मतलब वो भी गायकी रहा और हमारे बाप के हॉबी रहा, हमारे बाप में साल भजन वजन थोड़ा करत रहा, मैं वैसे ज़्यादा ना गए वहाँ तो के काम वाम करे के रहता तो बहुत मुड़ी नाम मारी सुपर।
0: या मैं राजकुमार तू बोले तू बजाइले 15 साल के, मैं तू कब से शुरू कर ले गाना गावेगा, तू इतना मोई से आवाज़ निकाले
1: ना ऐलक गाना हम ना गावत हैली।
0: अच्छा,
1: तो कुछ दिन भैल यहाँ बैन में रहली आईली यहाँ पे, तो हमारे जो दोस्त है बीरबल सुरेन बहुत जाना पहचान भी, तो वो हमके भेटाइल तो बोले सुन ना भाई बोले कुछ करक हो जा, तो कल जब हम लोग बोली छा कुछ कर तो बीरबल घर हम लोग गई सुरेन के, तो एगो बैन हम लोग उठैलो करना पड़ा इशारा ग्रुप।
0: yeah.
1: इशारा ग्रुप में तो जब हम लोग उठैली तो आयल तो आई गए भी न एगो आदमी रहा इशारा के फुर्सेतर इमिल मुसाई।
0: हाँ,
1: तो उल आयल इंदिरा रामचरण के।
0: yeah.
1: तो इंदिरा रामचरण आयल तब एगो सीधे हम लोग अरे प्लाट कट लिए ए पे छोटकट प्लाट बना ला।
0: अच्छा,
1: सिलोवा के माई।
0: yeah.
1: बहुत बकेंद गाना रहा हूँ।
0: हाँ, आज तलुक बकेंद।
1: हाँ, बहुत बकेंद गाना था वो कटल, तो मतलब बैंतुआ चलल कुछ दिन, तब बैंतुआ चलल जब कुछ दिन तो अब तनि बकेंद हो गल सब कोई, तो एक आदमी निकल के इधर उधर चल गए बैंतुआ में से, तर बैंतुआ में से हम लोग निकल गए, टूट गए, तब बैंतुआ अब ना चल पाई तक हम लोग रह गई, दूसर बैंत खोज ली, रही रही रही तो एक संगतिया मार मिलल रामूर्ति लक्ष्मण।
0: हाँ,
1: वो भैया हमसे बोले, भाई बोले तू आ हमारे संगे बजाओ, तो अच्छा बजाओ तो ही ओकरे संगे, तब बहुत बहुत बहुत बजली बिना ओकरे संगे नौ नहीं खतिन आखती नहीं खतिन यार बजली आखती नहीं खतिन यार, तो बजैली ओकरे संगे, तब गाना बिना गावती गावती एक ही काब की उतना हॉबी ना रहा मैं गाना गा के। मैं जब रामूर्ति के बीमारी कारण तरी अब लट गए तब उतना बैंतवा ना बजल, तब रुक गए तक तो हम लोग भेटाए लगे खूब, मतलब बैठक गाना के संगत रहा, तो हुआ जाए शुरू कर ली हम, तो कितने जने मिल के बैठक गाना के गाना दे ही समय बोले कि अब तू गई है काद को गायक शुरू कर ली हम लोग, तो एक बैंत हम लोग उठाई ली नया अंदाज, तो मैं अच्छा अच्छा आदमी रहा, एक तबलची रहा जो उनके नाम प्रदीप हरपाल, अच्छा आदमी रहा, वो बजावा था, तो वो शुरू कर इस बोले तू गई है तो गावे शुरू कर ली हम, तो ऐसे करत करत तब कुछ दिन होएंगे तब हम बोले ना अब ये सब चीज़ जब ना चले फिर क्लासिक चाहें बैठक गाना जैसे पहले सरनाम में होत रहा, तो शुरू कर लिए वो सब चीज़ कावे के सरनाम के स्टाइल में, जैसे बहुत रकम के गाना होत रहा, पहले रहा एगो ध्रुपद गावते हैं सबन, फिर एगो खेमटा गावते, फिर लंगड़ी गावते, एगो ठुमरी गावते हैं, कजरी गावते हैं ना, लंगड़ी स्टाइल रहा, कितना गाना है इसके सब स्टाइल में, तो ऐसे करत करत हम लोग के भेंट मुलाकात हो, तो और संगीत प्रेमी से मिलल गैल बात चीज हो ना, और तबलची महाराज जब अच्छा रहे तब गाना भी चले।
0: या हमारे कुमार बताओ तू पहला गाना जन तू गए लाइफ महफूज हम जानी रामूर्ति लक्ष्मण का बैंड में रह ले पॉपुलर रहा तुलकर, तो हफ्ता भर बैना साय रह रहा उ टाइप हम जानी लमार, तू पहला गाना कौन गए है पोडियम पे या महफिल में?
1: हम महफिल में गईली एक गाना रहा उ गाई से केसरी प्रसाद, हम मिलकर साज बजाते हैं, वो गाना पहले हम गईली। अच्छा। पहला दफे हम गईली वो गाना, तो गाना गावत गावत तब एक आध को गाना और फिल्मी गाना खोज ली, ना फिल्मी गाना मतलब जो लोकल गाना है लोकल गाना, तो ऐसे गाना गईली तब शुरू कर ली, कुछ दिन हो गए तब हम ना धीरे धीरे चाहे कुछ बदले के हमें आए खिलक, अब हम बताई जब हम देखी ला कि तो हम शायद जब क्लासिकल शुरू कर ली उसे पहले और बाद सबसे, तो बहुत दिन ना होते शायद 10 बरी से ऐसे होत होगा।
0: अच्छा,
1: पहले मतलब मूर्ति संगे निकल गई हम ओकर बैन टूट गए ऑफ ना गए दौर बीमारी कारण, तो अब शुरू कर ली दूसर के रूप में जाके, मतलब संगतियन रहे तो फास्तक रूप ना रहा कि अब संगतियन रहे तो हम लोग चाहे वहाँ पे बैठी बैठल जाए, एगो तैत रहा कि जो फुटबॉल फैन खेंगे वानिका के नाम सुने हुई हो, वहाँ हर हफ्ता हम लोग उफन करते आवे, एक से गवैया आवे, एक से तबलची आवे, सब कोई आ बैठे उफन होए।
0: मारा बताओ तू तोर फेवरेट सांगर के बेफोरबिल, कोई बोले है रामदू चैटू के हम स्टाइल लेबे, कोनो बोले हम हरीशु बालक के स्टाइल लेबे, मैं तो फाफुरित के
1: हमें वैसे फाफुरित तो ना रहा कि हम बोली हम कोई के ना करबे, हम जैसे हम सुनी लो के मोई गाना गवैया ढेर रहा, एक जोन फाफुरित जोन हमें कभी मोई लगल तो रहा उदित राम ना रॉबी के भाई
0: जॉनी
1: ना उतो नहीं फेगा
0: ओ जगदीश
1: हाँ ओकर गाना हम बहुत पसंद करते थे, और सोचा था कभी गाप तो इसने शुरू इसने भी गावे शुरू करो हम
0: मत तो कोई आवाज है तू निकाल
1: या मां निकर से मां ओकर आवाज और कुछ रहा तो उदित राम रहा उनका पिताजी और भी अच्छा गवैया रहा, देख रो भी हम लोग संगे लोलो भेले हम लोग मतलब संग है वो बजाई समू बजाईली वो छोटे से बजावत रहा, तो हम लोग के मुलाकात हो ही गया छोटे में, तो हम लोग हरदम संग है भेंट हो कभी एक आध दफे बजेली करे संगे हम गाना।
0: अच्छा राजकुमार ईफर तो नंबर 5 पे गगरिया गनों बोल है ना, नंबर 5 पे गनवा है उसका नाम है गगरिया, तो गगरिया हम लोग गगरिया सुनो कोई तो बाद प्रोग्राम जारी रहे।
1: जी जी जी जी

0: यहाँ से गाना मैं रोक देता हूँ। स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमान राजकुमार लक्ष्मण मसूर, बैठक गाना भजन गायक हॉलांदेस या देनहाक का है। और भैया राजकुमार से मैं सवाल करता हूँ, भैया राजकुमार तू हमसे बताओ, तू कै साल से कितना दिन हो तो के लगभग कि तू अभी गाना बजाना मिले
1: ना हो? गाना बजाना बजावत रहली जैसे बोली ला कि 14 बरिस 15 बरिस के रही तब से। और जब गाना गायक शुरू कर ली है तब जब रामूर्ति के संगे हम रहें तो धल्ले एक दुई गाना गावती ही रात में बहुत ना, खाली कीबोर्ड बजावती। मार जब ओकर से ओकर साथी छूटल हमसे तब जब हम लोग वानिका में जाए शुरू कर ली है, बैठे के शुरू कर ली है, तो धल्ले 10 बरिस ऐसे होती।
0: अच्छा
1: 12 बरिस
0: 10 बरिस में तू कोई के सिखाई ले है, कोई के बोले कि ए आओ मान लगे सीख। हाँ। अब कोई तो लोग आए ले हमें हारमोनिया सिखाई दे। हाँ। अब हमें
1: जो कितना जने हमसे बोली ऐसे हैगा ऐसे मांगी हमार स्टाइल है, हम खोजत ही मतलब भोपाल तो लादर के गाना।
0: अच्छा
1: हाँ, तो जैसे गनवा गावल है कोई कोई गाय नहीं ढेर, अरे फोर बोलता राम हमारे स्वर्गीय राम जी देव चैत्य का गाना कितना है। हम बोली देख कोई आवे में रल गए, हम बोली देख ये गनवा भी तू दूसरा कम से गाय सके गाय के हम बताए तो जब तू मंगी है गावे तो के चाहे एक एक गनवा तू तीन धुन में गावे के मकलक है रहेगा और स्टाइल भी चाहे बदले के। जैसे वही गनवा एगो तिलाना में गाय दे ली, वही गनवा गाय ली लंगड़ी स्टाइल में या एगो तुमड़ी स्टाइल में, तो अब वो इतने बैठावे पड़े और तू लदरवा बैठावे पड़े तो आदमी के हम बताइली भी। मगर आजकल के एगो रेस्पेक्ट सबके अच्छा हम हमें कोई ना, जब कोई के कुछ सीख बोलिए तब तो पहले बोली हाँ वो हम जानी रहा तो, और नहीं तो बोली कि ना छोड़ दे। Yeah. जब कोई जोन एक आध गो है सीख ले इसे जोन के हम बता ही दिलिए इसे ऊपर से इसने गाए तो ओकर आवाज सुनत बड़ा मोई लगे में।
0: या मैं भाई रसमन कभी ऐसे भर के कोई कुछ नहीं मान लो के हारमोनियम जाने बजाए गाना जाने तो लगे आल है तो के सुन।
1: हाँ, एक एक तेज रहा बहना 2-3 बरिस देव मंदिर में हम लैस देवत रही थी।
0: okay.
1: हारमोनिया के लैस।
0: अच्छा अच्छा
1: ढेर आदमी आयल कितना घुआ पे लैस लेस गाइस अरे ना गाइस हारमोनिया बजाए सीखीस कितना जने बोले मंग अब गावे। हम बोले ठीक है, बोली और मोई है, बोली बजाइए तो चाहे भी कुछ गावे के
0: yeah.
1: मकलक रहे तो कुछ कुछ लोग हैं जो उनके सीख ली सिखाई ली हम। और अच्छा थोड़ा से जब वो कुछ आई के प्रॉब्लम बीचे में मतलब वो बीमारी जो कोफे ताल थी सब रुक गए, तब से रुक गई थोड़ा दिन। और जब कोई हमसे कुछ पूछे है कि भैया ऐसे हम मांगीला बजाए हुए ऐसे हम सीख सकीला या ये गनवा ऐसे बा कैसे बताओ हमें, तो हम उनके बैठाए के बैठा के
0: मिठाई लोग। वही बात बात यह है भैया रसुमार की हम स्टूडियो में कई कलाकार से फील ले ली है और एक दो कलाकार हमसे बोले हैं राजन हाँ अब तो हम उम्र के हो गए अब सोचीला अब सोचीला कोई के सिखाए तरवेल वो दूसरे से सीख के और
1: ना,
0: गाना करे स्टूडियो के आदमी के एकलक चाहे ही बुलाए के उस्ताद आज से तो हले उस्ताद मानना एगो तो फौरी तो
1: वो तो आप लोग के बड़वर्गी है कि तो आप लोग ऐसे हमने वैसे ऊपर दर्जा दे ले, हम एगो छोटा आदमी हम आप कभी अब तक ना बोल के हम ऐसे बाटी हम या हम तो बड़का आदमी गवैया बाटी ना, हम छोटा सबसे छोटा गवैया में बाटी। खाली हम कोशिश करेला कुछ मीठा स्वर बनावे के अपने के चाहे गावल गाना होएगा मकी ओके अपने स्टाइल में गावे के शुरू करी।
0: मैं बताओ अब तुमसे बताओ भैया राजकुमार की तू कैसे मंदिर में पहुँच ले?
1: मंदिर पुराना देव मंदिर जब रहा खासलान में पुरन कुआ रहा तो वहाँ हम जाते ही भजन करे हम लोग। और हमारे को मित्र भी बहुत बरका गवैया हुआ एक लख हमसे मोई गावे अभी पंचम रिबेन पंचम उनका नाम सुन रही हो तो ओकर संगे हम लोग हमारे दोस्ती ओकर संगे सबसे लंबा है। जब हम बोली इशारा ग्रुप हम लोग बनाए रही तो ऊ रहा हमारे संगे वही दिन से हम लोग की दोस्ती बनल आज तलक रही है अब आज तलक है सब छूट गए बाकी वही खाली ना छूटल है। अब सोचिए लोग अभी ना छूटी गए जब लिख आइंदा।

0: ना हो गया तब वो चले हैं और का नाम है गाना जो कुछ रहेगा तो कभी वो बैठे कभी हम बैठे ला हम लोग अपने में कुछ बातचीत करी ला कि गनवा कैसे रही कैसे कर
1: मारा ना तथु मैं तो कहीं देख ली कैसी शायद कृष्ण मंदिर में
0: जी
1: वहाँ पर तभी तू है ना
0: हाँ तो अब सब सब बोले सब दुनिया देख के ना अब पहली तो हमारे को हमारे नीफ वो भी इफाहौन में पहले बतिया था महेंद्र गुदर तो वो सब हमसे बोले भैया बोले अब तो के चाहे मंदिर में जाए भजन करेगी हिया में तो गयी तो भेंट भैल हमसे मुलाकात भैल पंडित भगवान जी से
1: रजेश
0: हाँ रजेश से तो वहीं से बस ऐसा क्लिक भैल चीज हुआ ऐसा संबंधी बनल कि महेंद्र हमसे बोले भैया बोले तू एके ना छोड़िए और पंडित जी से बोले तू एके ना छोड़िए तो इसने सब दिन से बन रहे और अब आए के मतलब ये है कि एन स्टेशन पे वही बाटी वही रहेगा हम सोचिला ढोलक प्लेयर जो जो रामदेव चैतु बुझाता महेंद्र शिव नंदन बहुत नामी आदमी है और अरे सब सब ढोलक प्लेयर अपन अपन अपन जगह पे सब मोई है ना तो ये बजावे तो मैं ये क्लासिक ज़्यादा लोवी करे हम लोग जाए कहीं तो एक जब भैया सिंह के जब बोल दी कि हमें एगो स्पोति चाहिए मतलब तो ओके चाहे को क्लासिक ओकर दही जो ने गर्मा जाए तो गा ली अपन बजा ली वो चीज और फास्ती है कि हम लोग जब कहीं जाए ला जैसे आजकल के ज़माना में इतना हो वह हम लोग कहीं जाए चाहे जहाँ जाए वो कि चाहे जो चीज रहे पहले ध्रुपद ध्रुपद मतलब ये है कि जैसे पूजा हो तो गणेश भगवान के पहले स्थान देवल जाए ना गणेश भगवान के वैसे पूजा में अरे गाना में पहले ध्रुपद है ध्रुपद या वंदना गाय के तब और आगे चली प्रोग्राम
1: या भैया राजकुमार अब तो कम मुइलक कर थोड़ा से अब तू माइक्रोफोन के पाछे बैठल बदे तो तू चाहे वो बैठक स्टाइल और चाहे वो भजन एगो छोटा के सुना दे सुनने वालों को कि सबके मालूम है कि सच्चे के राजकुमार स्टूडियो में उपस्थित है
0: जी ऐसे तो कितना गाना है जो मूड़ी में है और कि एक छोटा रूप में है कि बोला था बतिया कि जा

0: वाह भैया राजकुमार, या मैं इको स्टाइल गाना रहा है, बैठक गाना रहा
1: है। हाँ, बैठक गाना है। अच्छा। ये है ठेका चलता अभी तक।
0: अच्छा,
1: मतलब ठेका चलता कुछ फास्ट चले कुछ स्लो चले, एक पद स्लो चली तो ओके दौड़ाए के लिए तो चले ली कस के। पहले नाटक में होता रहा रोशक गाना गा होता रहा, और जब फास्ट आया उसने को तब तब देगिरी चलत रहा था।
0: या।
1: तब तीनों कटे ही कटे उठे से ऐसे बात ऐसे स्टाइल की
0: जैसे एंगल के को नाटक स्टाइल का गाना। हां हां, मैं से तो नाटक बहना ना
1: अब तो ना हो है,
0: मतलब पकड़ ले है स्टाइल वा बढ़िया।
1: वही बारे हम लोग के मोई लगे है, और हम लोग पंचम हमारे दोस्त जो है और भैया सिंधन है और काजन है, तो वो सब जब बह रहे हैं तो ये सब गनवन गाए पाए हम लोग। मतलब वही बोले ला कि सब कोई के रेस्पेक्ट तेर कर, सब तबलची के में रेस्पेक्ट तेर कर, सब गवैया के में रेस्पेक्ट तेर कर। बाकी कभी कभी जैसे हम मंगी है चलावे रास्ता तो उतना चल पाएगा, तो जब वो तो कना बखराई पो अफमो के ना बखराई पो तब मिलन वो ना होगा।
0: मैं ओपनिंग में भी ना,
1: हाँ तो जब बाइक को ओपन करियो तो हाँ तो बताइयो कि देखो इस साइड देखो दो तीन जने हैं जो यौंगर भाई हम लोग संगे चले हैगा बैठक गनवा वेरल में, तो वो हमसे हम बोले हमें गनवन दे तो हमको गनवा दे। लोग गावे है वर्षिश जैसे गावे मांगे वैसे गावे है, और अब भी स्टाइल वो समझे लग रहे तो ओके मोह लगे तो ऐसा मिक्स खाइए तो तनी मोह भी लगे तो
0: या ना
1: तो कुछ कम वा करेगा ना कि कुछ बोल ले तो बिहान भरे अपन वाला करी तो ना तो से ना रहिए।
0: मार जो बोले बिहान भर अपन करी वो सब वो सब अभी धीरे धीरे कलाकार हो जाए।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
0: मतलब कि उतना उतना खदल अभी चाहिए ना।
1: हाँ, कि तो जब हम लोग शुरू करी सीखे के मतलब एगो धुरपत धुरपत के धुन और स्टाइल दूसरा कमे गए चले लंग साम चले। जैसे एगो है महिल माकलक वो का नाम है त्रिनिदाद के गाय चुकल है यूसुफ खान कि अयोध्या ऐसी धाम तीन लोक भी परमान। तो अब धीरे धीरे चले एक पद धीरे चली तो अब ओके एक स्टाप तनिस फर्स्ट नेल करी तब एंड द ब्लैक फर्स्ट नेल करके गिरा दी वो ध्रुपद में गिरे। और अबे और स्टाइल जो भाई को तिल्लाना बफूबत आवे है जैसे रोस्तक से बोलिए कि जोन की कई रकम के गाना श्री राम जी के हो कृष्ण की जी हो या कव्वाली स्टाइल में गजल हो है। जैसे रोस्तक से चेतावनी है कि हम तो कबूस खाब दिल गए हम कि मुसाफिर क्या पड़ा सोता भरोसा है नहीं कल का, तो एगो स्टाइल है तो अब हो जा है। और ऐसे है वो लंगरी की स्टाइल, अब ढोलक जो नमिया ढोलकिया बजाए वो समझे कि हम का मांगी लखा हूँ जगह। पहले के आदमी जो रहा बड़े बड़े उस्ताद लोग सनाम के अंदर तो वो सब ना बतिया था कि हम ई गनवा गावे, वो तबलचिया समझा था कि वो जब ओकर मुहा से सुन के गनवा सोच के समझ जाता कि ओ इस स्टाइल हम गिरी गाऊ। अब बताए करे कि एक हम लगरी गावे या को तिलाना गावे नहीं तो कव्वाली गावे, मैं पहले वो सब समझ जाता
0: हो सके फास्ट तबलची रहता
1: फास्ट फास्ट तबलची। तो ऐसे हम लोग भैया सिंधन जोन बा हम लोग अब इतना दिन लोलो भैली है तो अब वो हमें जान गई धीरे से तो कि अब हम कैसे कौन सी मांगेगा तो ऊपर से पकड़ेगा तब मोई से रहे। और जब फरसेर ना रहे दही के तो गाना आवाज भी और मोई से निकले सब चीज करे पड़े कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ना रहे तो
0: जरूर।
1: और वैसे नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रही नहीं तो सोचो कि अब भी का गाई तब आगे पीछे जाए तो गड़बड़ाए लगे तरह से खराब होने लगे
0: ना। भैया राजकुमार या उस्ताद राजकुमार हम कहूँ गा से बोला मार उस्ताद जी अन बहुत खुशी में कि हम लोग के वादा रहा सिरो में आए आप अलो वादा नहीं भैलो फाहुन के डायरेक्सी और टीम के ओर से हम बहुत धन्यवाद देला तुके। और आखिर में तो कुछ सुनने वालों से कहना चाहते हो
1: ना हम क्या बोले भाई जी देखो ये होलैंड सनाम त्रिनिदाद के अंदर में बहुत बहुत गाने वाला है ना बैठक गाना गाने वाला है। कुछ लोग गाते हैं अच्छे से कुछ लोग थोड़ा कम गाते हैं जेकर स्टाइल जैसे है अपना अपना कार्य करते रहे। और लेकिन जो बैठक गाना खास करके जो न्यू जेनरेशन है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखो थोड़ा ध्यान धरो क्लासिक पे। और क्लासिक जा रहा है हम लोग के बाद अभी कोई आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, तो अगर ध्यान धर सकते उस पर तो बहुत अच्छा होगा।
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया राजकुमार। दोस्तों, सुनने वालों, स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमान राजकुमार लक्ष्मण, उन्हें मैं बहुत से धन्यवाद देता हूँ।

शाम का मौसम के समाचार दोस्तों फन में डाक विस्लिन सोन एंड स्टापल वॉल्क एलकार आफ Het blijft helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 15 tot 17, ja, कहीं पर 19 graden रहेगा. जो वीकेंड है, कल शनिवार है, तो कल का मौसम किस तरह से रहेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर 20 graden. उसके बाद सोमवार रविवार को 18, सोमवार वीकेंड के बाद सोमवार को 12 graden हो जाएगा दोस्तों. मंगलवार को 13 और बुधवार को 14 graden रहेगा. जैसे मैंने वादा किया था कि आइटम चलेगा, और आज का आइटम जो है वो है जो. तो पहला सॉन्ग है जो वादा किया है निभाना पड़ेगा.

वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पद्मश्री मोहम्मद रफी एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर, दोनों की मीठी आवाज़ में सॉन्ग फिल्म ताजमहल का अभी प्रोग्राम में चला दोस्तों। प्रदीप कुमार और बीना राय दोनों फिल्म में काम किया। श्रीमान अशरफ हुसैनी भी स्टूडियो में उपस्थित है और वो मांग किया है, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगे, रोओगे तुम तो दुनिया नहीं रोएंगे।

साहेब अशरफ हुसैनी के लिए जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेंगी नहीं कि इन सीफ तक में फिल्म रिलीज हुआ, कठपुतली फिल्म का नाम है, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी चला। आइटम जारी है दोस्तों, जो का आइटम है और अब की बार जो तुमको हो पसंद है वही बात कहेंगे मैडी मुकेश की आवाज़ में।

0: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दोस्तों कल के बात है, सुतमेर में आग लगा और ये लगभग 5:30 या 6 बजे शाम के ये आग लगा। मैं वहीं पर था आसपास में और महक आया दोस्तों, तो सब घर पर जितना खिड़की था बंद करना पड़ा। फिर ब्रांतवेर आया और पता लगता है कि जब ब्रांतवेर वहाँ पहुँचा तो लोग ब्रांतवेर लीडर को बकूखल किया है दोस्तों। एक पांत एक न फलात पांत है, एक न लीक चांद कांतोर खबाव है जहाँ पर आग लगा सुतमेर में। और दुख की बात यह है दोस्तों कि मैं क्या कहूँ कि जब ब्रांतवेर वहाँ पहुँचा आग बुझाने के लिए तो लोग ब्रांतवेर को बकूखल किया। ऐसा मत होना चाहिए।
1: ये कोई हमें प्यार कर,
0: वाह वाह छुटाई भी सही लेकिन प्यार तो करना चाहिए।

पल भर के लिए कोई प्यार कर ले झुटा ही सही। छोटा सा स्पॉट बरेख तो दोस्तों न्यूजीलैंड से एलफ ताल आखिरी यूनी को अपन आखिरी लास्ट उफन इंतलान खेलेगा, वो भी उस उज़्बेकिस्तान से, और ये खेल होगा न्यूयॉर्क का स्टेडियम में। और यूरोपा लीग में भी फुटबॉल का मुकाबला हुआ, चैंपियंस लीग में भी फुटबॉल का मुकाबला हुआ है दोस्तों, और फिनाले जो है चैंपियंस लीग का वो रहेगा शनिवार और सैटरडे 13 मई बुडापेस्ट में पेरिस मुकाबला करेगा आर्सेनल से। और ये है चैंपियंस लीग, और यूरोपा लीग में भी रहेगा फिनाले, और वो है वूजदाग 20 मई इस्तांबुल तुर्कैया में फ्रीबर्ग एस्टन फिला से खेलेगा। और स्पॉट ब्रेक्ट यूरोपा लीग के बाद कॉन्फ्रेंस लीग का मुकाबला भी हुआ है, और फिनाल रहेगा 27 मई वूजदाग, और वूजदाग 27 मई क्रिस्टल पैलेस खेलेगा रायो फालेकानो से। और एरेडिविजी में देखता हूँ कि फुटबॉल का मुकाबला है या नहीं आने वाला वीकेंड, वैसे तो शुक्रवार को हमेशा रहता है लेकिन शनिवार को भी नहीं रहेगा, कल भी नहीं रहेगा, लेकिन सोमवार रविवार को गुवाहाटी ईगल्स पीएसवी फेयनोर्ड आसेट एफसी ग्रोनिंगन एनईसी आयाक्स एफसी यूट्रेख्त एफसी ट्वेंटे स्पार्टा रोटरडम नेकब्रीडा एफसी हेरेफेन फोर्टिना सीतार खेलेगा पैक्सवाले से एक्सेल्सियर एफसी फोलंदम और आखिरी में टेलस्टार हेराक्लेस आर्मलोस। ये सभी खेल जो मैंने आपसे बताया, ये सभी खेल क्वार्टर फॉर फाइव शुरू होगा। और जैसे आप सभी को मालूम है तो आदो डेनहाग फिर वापस चला गया है दोस्तों फ्रिंडल उतरे एयर डिफिसी में, और दो फिज काफ्ल कवेस्टर एक आने वाले दिनों में खेलेगा अभी। तो यह तक था छोटा सा स्पॉट पर था, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट आपको दूंगा। पीएसवी तो कैंपियन हो गया है ट्विन डेर तक वेस्टर अक्टिव पिंट ऑफ नंबर ट्वी स्टार्ट फेयनोर्ड है ट्विन डेर तक वेस्टर इन पिंट। तो दो खेल रह गया है, दोनों खेल में से एक फेयनोर्ड को जीतना चाहिए या एक अलग खेलना चाहिए। उसके बाद नंबरद्री पर है एनएसी ट्विन डेर तक 56 पिंट, आयाक्स ऑफ नंबर 4 में 55 पिंट नंबर 5, FC Twente met 55 punten, AZ uit 32 wedstrijden 50 punten, nummer 6 per hen, nummer 7, Heerenveen uit 32 wedstrijden 50 punten, Agatelker Utrecht, Hoesgebaard, Sparta Rotterdam, nummer 10 per hen, FC Groningen, 11 Goethe Eagles, nummer 12 per hen, Pek Zwolle, nummer 13, Fortuna Sittard, nummer 14, Excelsior, 15 per het Telstar, 16 FC Volendam, 17 Nac Breda, en hekkensluiter Heracles Amelo, degradeer hoe ik het zal zijn, dat ik een wedstrijd kan तो यह तक था छोटा सा स्पॉट बरेख्तन। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, राजेंद्र कुमार दोस्तों साधना के साथ इस फिल्म में काम करे जैसे मैं सोचता हूँ, और ये सॉन्ग आप सभी के लिए, सभी लॉफर्स के वास्ते है।

दोस्तों, मैंने वादा किया था कि सितारों का सफर चलेगा, लेकिन आप सभी से माफी चाहता रहूं और वादा करता हूं कि आने वाला शुक्रवार शाम में मैं सितारों का सफर जरूर पेश करूंगा आप सभी के लिए। बुर्ज खलीफा में क्या हुआ, वहां पर जो कार्पलान है, एक वोन वेग बुर्ज खलीफा, वहां आज सुबह का बात है, एक हैस क्रान जो स्वेफ पै हैश करके और उतार रहा था, तो आदमी जिन्हें स्कैफ पे रोकना चाहता था तो ये आदमी गिर पड़ा। तो ये आदमी जब गिर पड़ा तो स्कैफ पे आदमी के ऊपर पड़ा गिरा है और आदमी बेवस्थलूस हो गया है, उन्हें सिकन हैश ले जाया गया। पता नहीं उसका हालत किस तरह से है। अर्थबेस इंस्पेक्टिव भी वहाँ पहुँचा है, खोजबीन किया है। ट्रॉमा हेलीकॉप्टर के साथ ये आदमी को बहुत खराब का सिकन हैश ले जाया गया है। तो इरादा है, सोचता हूँ दोस्तों कि आदमी का बहुत से चोट नहीं आया होगा, फिर भी एक हैस क्रान में से जब ये स्कैफ पे जो गिरा है तो जोर से आदमी के ऊपर गिरा होगा। एक नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, अभिजीत का गीत, बहुत दिन भय मैंने नहीं सुना, सोचता हूँ कि आप नहीं सुने होंगे भी। कभी यादों में आओ, अभिजीत की आवाज़ में।

कभी यादों में आओ दोस्तों, ससनहेम में क्या हुआ, वहाँ का जो ये खफांगनेस है, तो इस खफांगनेस में एक खफांगन एक नौजवान पेस्टोरल वहाँ का जो है उनका कांतूर में घुसकर और एक स्कैर फोरवेयर पाया है, लेकर शुरू किया बदले करने का। तो जो पेस्टोरल है उन्हें बंद कर दिया, नौजवान को बंद कर दिया इस कांतूर में, और हेल्प दिन से पहुँचा, सिपाही पहुँचा, और एक घंटा के बाद ये आदमी ये नौजवान को वहाँ से निकाला गया है, खोजबीन किया गया, उन्हें चोट कहीं मत मिला है या कहीं नहीं आया। तो ये हुआ है ये खफांगनेस जो शासन है में है उसी के अंदर। अब की बार जो सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, शिक्र होता है जब कयामत का, माइटी मुकेश की आवाज़ में।

कपूर और शर्मिला टैगोर ने काम किया दोस्तों इस फिल्म में, और अनसिक्र होता है जब कयामत का एक दो किशोर कुमार का सॉन्ग हम सब सुनेंगे। और धीरे धीरे छः का वक्त हो रहा है दोस्तों, या लगभग 5 मिनट बीत गया है, 5:30 और 6 बजे रूप में स्टूडियो में रहूँगा। उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना, खास करके जो न्यूज़ ब्रेक है जॉनी का जरूर सुनते रहना।

नीली नीली अंबर के बाद दोस्तों मैं देखता हूँ अब की बार तू है वही किशोर दा वांस अगेन प्रोग्राम में।

बस बस ये वादा रहा के बाद फिर किशोर कुमार का एक सॉन्ग है दोस्तों, ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

हाँ यही प्यार है, 9 मिनट रह गया है या 8 मिनट बाकी इस वक्त दोस्तों 6 बजने में। एक दो सॉन्ग चलेगा, उसके बाद आप सभी से मैं विदाई लूंगा।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर राम राम नमस्कार, प्यार भरिए दाम से सियकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

और दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम हम तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। और सूरीनाम में भैया आप लोग जानो है, जहें देखो बस वहीं ही, जहें देखो वहीं सोना खुदा। भैया बेनलांत में सोना खुदा है, और जहां सोना है तो वहाँ लुटेरा भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग जानते हो है, जब देखो तो कहीं ब्रासिलियान तो कहीं ईट कहीं ऊ, और जाए कि सबके लूट लेवे है। तो एक बार फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आए ले हमारे जनता हाउत बद्रैव सूरीनाम में। वो है बीते हुए रविवार को सोनदाह को दुई गो तुई हौत शुक्र भैया फन अनहोक्त खफालन ऊपर से गिर गया भाई। बाकी ये बात ना है, ये गिरल है दुई गो लंडन ऊपर से नादा से फोर्स एस्ते इंफॉर्मेशन वारन अफ कोमन ऑफ सो खनुम द हाई ग्रेड ब्लास्ट पे बार बे खातिर ओम एगो एक्सप्लोसिव भइल है इन खदील द फन मेन वार खस्तीन द मेट एन हो खौत गहालते वर्ड लॉस गमाक। तो वहाँ पर एगो काबल है एगो एक्सप्लोसिव से मन करी से जो ने इटवन दगे तब सुनवा मिलेगा। और यहाँ पे ना द ऑन फ्लॉफिंग ना द ऑन प्लॉफिंग ढेर इलेगल साउथ सुकर्स उरेक्टिंग हुआ मेरा हाँ वहाँ पर टैक्स फोर्स स्ट्रेट ओपन फॉर यूथ द ग्रुप। दिस वहाँ पे टैक्स फोर्स जरा हाँ ग्रुप हुआ जो हुआ दौरल रहा जो दगल है तो सबके हुआ खदेरी से और बोले तेज तरह तो किंग हेड मिस बोले कि वही में दुई मिला ऊपर से गिर गए और दोनों भैया कट उड़ गए मोड़ी उड़ में चोट लगल है। और बोले है वेर तर प्लास से बहंदल टैक्स फोर्स मेरे वेर के सु सबके हेल्प करी से ई हैव यू फलीन करी से बोले बाकी दोनों स्लाख तो फरवन दोनों जो ने इट वा पे गिरल लाते से रॉस ब्लॉक है रातन ज्वार खवन भैया बहुत चोट आए गए हैं। शेर मुई लग बड़ा एक बार अप्लैक है वहाँ पे जहाँ पे जबन जाए क्योंकि हेल्प कर सके हैं। और दोनों लंडन हुए पे वो दोनों आदमी के दोनों के मौत हुई गए भैया देहांत हुई गए मर गए है। द सिचुएशन मिनट्स अंडर कंट्रोल बोले है मेंसरी इन ओमगेविंग सिख नो रूरन फर्स्टकिलेंड डिस्टेंस से इंगेस्काक जहां पे फॉरेंसिस ऑफस्पोरिंग दिस भी हुआ बा। और बोले ओक द हेल्प द भैया इलीगल मरल हैगा जैसे बन दागे हुआ इटवा बिरगिया फोरे है जाय के सुनवा खोजे के इलीगलवन दौरे है भैया सब दौरे के जाय हम सुनवा पाई। और जे दौरी है भैया तो यही प्रॉब्लम हुई। दोस्तों हम चलते हैं फीहा पी के ओर। यहाँ बताए गए हैं तो लुंजानो फोर से तरफ यहाँ पे ही कर रहा और रहा हम लोग के चांद संतोखी रहा। तो चांद संतोखी तो आप लोग जानो अपूर्णा है तो ओकर जगह पे अंदर फोर से तर जो रहा फीहा पी के और हैगा ग्लेन उलर्स। तो ग्लेन उलर्स अंदर फोर सीटर रहा। अब सब सोचे कि के फोर सीटर बनी हुआ पे तो यहाँ आज के न्यूज पे है कि ग्लेन उलर्स पैर डायरेक्ट न्यू फोर सीटर हो गए हैं फेहा पे के तो पार्टी कांग्रेस नेखन इन 2027 तक वो रहेगा। बोले फेहा पे ही ग्लेन उलर्स पर डायरेक्ट आनखवीसन अस न्यू फोर्सिटर होफ वर्स्टीर के फोर्सिटर हैगा जब ऑल प्रेसिडेंट संतोखी ने फॉलो द ओवरलीडन पार्टी संतोखी जगह बा। अब बोले 4 तारीख मई के एगो फरखादरिंग में होफ वर्स्टीर भइल है फॉलो द पार्टी वाज फॉर ईस्ट twee derde meerderheid van het aantal situatie bestuursleden aanwezig waardoor rechtsgeldig en besluit kon worden genomen. De volledig naar haar bestuurder maar 2/3 deel besluit kreeg ze gaan. Oor hoe besluiting was op hen kabel hega lilies om de 2/3 deel aan.
Omdat opvallend hegaan dat Oelers niet via een directe verkiezing door de partijcongres is gekozen, maar door schuif vanuit zijn functie als ondervoorzitter. Dus ook is hem een verkiezer genaamd bij thuis. Maar omdat de ondervoorzitter had, hoe schuif je als voorzitter. De VHP stelt dat dit gebeurt conform artikel 11 lid 5 volgens van de partijstatus Melikele. Bullet de aansluiting loopt vanuit een formele goedkeuring door het eerstvolgende partijcongres Oelers. Zal de functie uiterlijk 29 mei 2027 klikken voorzitter. Op die datum moeten de hoofdbestuursverkiezingen door de partijcongres worden gehouden. Tapine Hoiga. Ook er waren mee, maar oer hij gaat tot en met Janneke mei 2027 klinkt aan heel wat salte dalle 1 jaar keer. Uba, toen dus toen jij ze hee, ouro te aaplok ko hem, uske baare me batante hi rehege. Aaplok ko pata bhai waloon, bhaiya loon, mausi loon, dadi loon, kana waima joan botia, ukar baare me bite huye hapta me, bhi aap sab ko hem bataye te, ki bhaiya joan firwa hapda huye kana waiva, very sherfis joan hai, waha पर भैया नवा नवा राजफन बस्तीर बैठल रहा ओकर बारे में हुआ के कम करते स्टक कर ले रहा जब मिनिस्टर फन गई ले हुआ पे तब बोले हैं जो बस्तीर है बोले बारा चोरी करी से तब बस्तीरवा के इन डायरेक्ट ऑन स्लक कर दी से रखे रे बाकी उस सब के को ऑफिसर रहा जेकर नाम बा सिंथिया एंसर एंटेनमर मैनेजर रहा लेस्ली डैनियल फंडा कानावाइमा मैनेजमेंट कंपनी जो तार तारीख सोमवार के 4 मई के ओहू सब के ऑन स्लक मिल गए है दैट बा फेस्टकन ब्राउनन बे स्केप Vaartmaatschappij in Suriname tegenover. Bolle vernomen wordt dat is een besluit van lezen onderzoek bijlegen. Kiezen CMC John hem naar onder meer financiële, bolle die financiële chori kallen baten, bhaiya, fraudeer kallen baten. En je fraudeer kallen baten, dat krijg je dit allemaal mensen. Pijle bestuurwa ka bolle hem, en bestuurwa onslag bijla, op elkaar adviseur bi, elkaar adviseur bi, jani ki onslag hoege he, hamare janta. और यहां और बतावे है एफएम के बोले है कमिश्नर रातफान कमिश्नर के बोले हैं और फान सीएमसी वेयर टू इन टू द अप्रैल के उस ऑनस्लॉग भइल है जहां पे कमिश्नर रीजनल फ्रीजर एंड लीडन अब्दुल मदार एंड एडगार फान खेंदरन Minister Raymond Landveld, John Hega Communicatie en Toerisme, ke, gebeurde dit moreel en ethische gronden. Obole, he, ik er waren corruptie, raha, belang voor stellingen en mogelijke corruptie. Raha, de corruptie, to hamara, desmi is ter plaatse pe, hamari janta, dat je is ter plaatse pe, he. Nou, wat verwacht je eigenlijk van deze? Nieuws is een hele normale nieuws, mensen. Want je hebt zo'n nieuw, dat hem aanplukken betaalt hier. Kijk, hier corruption bhail hai wahan corruption bhail hai ta je corruption ho hai dosto ta batana to hamara kaam hai lekin in Suriname is dat een hele normale saag geworden wat betreft over corruptie beste luisteraars to ye baat hai hamari janta ab dekho bhaiya ne ka bole hai Deo Sharman ka bole hoge gebouwen in Suriname vereisen moderniseren. Sering van brandweer. Bole jon purana barka gebouw he. Bole sab chahi brandveilig reike. Bole chahi moderniseer kareke. Ucha gebouw Suriname me ba. Vereisen panden die op een niveau van high-rise gebouwen waren neergezet. Deze kwestie werd de afgelopen week aangekaart. Brandweer Suriname 1993 keer in het hoogste college van staat. Op de parlementariër onderschreef dat de brandweer gemoderniseerd en adequaat uitgerust moest worden. Maar alleen
Nablussingswerkzaamheden verrichten huizen niet verzekerd tegen brand. Bij huisbrand blijkt veelal dat huizen en panden van bewoners niet verzekerd zijn. Al oesap tjitje geen verzekerd krijgen, barka gewoonke. Maar die moeten natuurlijk wel brandveilig zijn, mensen. Zo is het in Nederland ook, mensen. Het moet goed brandveilig zijn. Vooral die hoge gebouwen niet, maar alles moet brandveilig zijn. Toen je baat heeft, maar in jenta. En ja, wat hij, bhaiya. VS, Amerika en Iran escaleren strijd. Om straat van Hormuzi doenen ke ladiya hoe, bhaiya, hier, hem loke teel hier pe. Dala se jada hoe ge he. Amerika en Iran somuar ke nieuwe aanval kari se bhai. In de golfregio, mensen. Terwijl Dunu Deswan verwikkeld zijn in een strijd om controle over de strategische staat van Hormuz. Dunu mange Hormuz kilewe. Ab ikkona sunio bhaiya. Ki orlokwa hove keran wapen ke. Ki mach ke ab sab ku tel ke bare me jahen. Wan Hormuz strajun he oke saman ban kalle ba Dunu. Aur pura dunia ema musibat me ba. De nieuwe escalatie ondermijnt een fragiel staakt het vuren. En zorg voor toenemende spanning in een van de werelds belangrijkste energiecorridors. Ja, wat hij geeft ons toe. बोले अनफलवा रकेट से हुए ड्रोन से हुए है डोनाल्ड ट्रंप बोले एगो नवा ऑपरेशन अनकोंद करिसेगा प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में कि फ्रीडम होवे फ्री होवे और एकर बारे में बोले फर्स्ट क्लास ऊपर टैंकर्स एंड अंदर स्केप एंड वे दौर खान तबीरन दौर द सी स्ट्रैट दी फ्रीवेल गेस्लोटन इज सिंस द अनफल अमेरिका इजराइल से और ईरान से फरवरी में बन भइल है दोस्तों और यहां बताई गई Amerikaanse autoriteiten werden maandag bole meerdere koopvaartdijschepen getroffen. Trump bole he weinig over project Freedom ba. Dat heeft via social media aankondigd. To ibhaya hum log ke Trump to duniya bhar ke cheez upar bole he. Maar konchi ओमा वार हुई पावे की ना होवे है सबसे बड़का मुसीबत है कि हम लोग के तेल बन है और जब तेल बने भैया तो हम लोग के का बोले महंगा में कीने परी अरबेस डॉक्स भैया क्वेस्टी अरबेस डॉक्स के अने देख दौरान जो नहींगा अने स्टेज हीट hang ijzer voor hoe heb je jon hega C47 vakcentrale jon in Suriname bolle hega bolle arbeidsminister van arbeid ke bolle vervolgens onderbrengen van dit directoraat onder andere ministerie jon minister van arbeid he bhaiya nog steeds een heet hang ijzer ba bolle zoals bolle bekend kere he valt arbeid nu onder ministerie van volksgezondheid wel zijn arbeid aur ik er bare me Robbie Berenstein bolle situatie ook nooit goed is uitgepraat met de regering een keertje is er even daarover met de president gesproken maar meer niet Berenstein zegt dat er vanuit de vakbeweging ook worden gekeken naar wat de invloed van de beleidsbeslissing zal zijn voor de werkvloer ke bare me bolle Berenstein C47 ke aur dosto chikungunya bhaiya Suriname me bahut jyada hai tikar bare me Raghunandan ka bole baloof kare hai ki chikungunya blyfen chikungunya bespuiten blyfen uit in Nikeri ja bole bewoners van Nikeri aur westelijke polder bole hai ki aankondig karisega ki bespuiten tegen chikungunya terwijl volgens openbare gezondheidszorg BOG bole 24 april ke bole uitgevoerd hadden moeten zijn bole 24 tarik april ke bole uitvoer keren DNA legion hai Ravind Raghunandan bole ophelderen mange ministerie van volksgezondheid ke aur bole hega nu blijkt dat meerdere straten niet zijn behandeld aur communicatie volledig uitblijft
बोले ढेर रास्ता बोले सब नासपोईटी करी से बोले हैं मानदन फन वाक्तन क्वामन ऑफिशियल बकेन माकर भी ओके बोले हैं ओवर गरिक्त बस्प्रुइटिंग इन ओंडर मीर फन पेतम पोल्डर एंड द वेस्टलिक पोल्डर देयर गा बोनस होप दैट देयर अल्टीमेटली एक्सी सो वन निकेरी में बहुत ढेर भी भैया जैसे परमारीओ में निकेरी में बहुत ढेर चिकुनगुनिया है आदमी बहुत बीमार है फोकस इन यालन एड गमेंस्कप से नीट अल अनकोंडक्ट aangedaan en zijn sommige straten ondanks vermelding op de officiële route toen ik er waren met DNA-lid roep en BOG in het ministerie te Suriname bij ja te lonjano he pura kama na hoe dunia ke de khade ki malli bati hem maar mooi se je takio ta adhati ha mare bhaiya और आधातिया ना मारे है अब देखो भैया एगो हंता फ्यूरस चलल हैगा एगो क्रूस के फैगा होंदियो इसमें और हुआ पे भैया बहुत जबर ऊ काबुल फ्यूरसवा चलल हंता फ्यूरस हैगा एगो क्रूस के पे भैया सबको या क्रूस करे तो ओके जरूर चाहे जाने के कि एगो वेर खसौत है थे सौरख है अने वेर खसौत है ऑर्गेनाइजेशन है हाउट ए रीकनिंग में कि हंता फ्यूरस जो नहींगा इंसान से इंसान बसमैत करे हैं और ये क्रूस के पुआ भर पे बा और ये बोटिया हैगा होंदियो इसमें और मारिया फन कैरकोफ है एस्ट बसमैतिंग पाई जे फरमूडलेक बैटन है स्केप opgelopen waar de heer Furus aan boord is geïntroduceerd. Te bia betawe volgens ego deskundige bole he Maria van Kerkhoven bole eerste besmetting buiten boord ke bahire raha au botia am gel te ekwon sab ke an besmet kar de se de we ha o bana de dat het nog aan een aanname gaat bole wel inmiddels bevestig kregen dat meerdere opvallende bemaar is oma. Bolle rapportage stelt de organisatie dat 5 personen vermoedelijk besmet zijn geraakt. Or ja, wat we hebben, zeker is dat een Nederlandse vrouw is ook overleden mensen aan de gevolgen van de virus. Zeker he. Doden en besmettingen aan boord eerder werd bekend dat zeker 10 passagiers botia me morgen he. Luchtweginfecties he. Nederlandse echtpaar dat aan de cruise deelnam. Het is mogelijk dat zij aan boord besmet zijn geraakt. Ik ben 69 jaar oud. En vloog naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Waar zij ziek werd op 26 april. In ziekenhuis overleed. Besmetting mogelijk via nou contact ke bare mein te skipua jun botia bhaiya oke samay quarantine mein le lise ga jaise virus jab hum log ke raha an ka bole corona te sab koi quarantine mein band raha aise botia ke samay kap ferdi mein le lise ga ekar bole de vertrok van de an uzaya in Argentinië ligt middels al dagen voor anker voor de kust van Praia hoofdstad van de Kap Verdi geen van de opvarende 8 passagiers en 59 bemanning leden van 23 nationaliteiten mag van boord de autoriteiten staan alleen tot dat 3 zieke personen het schip verlaten en sabke chahi ohi mein rahenge want sabke onderzoek hoe hai ondertussen spaien toestemming deze ki mogelijke doorvaart naar Canarische eilanden waar het schip kan worden onderzocht aur bole oké sabhal en gedeinfecteerd kariga botia ke de Spaanse autoriteiten besluiten later op de Honduras daadwerkelijk mag aannemen. ये फीरस भैया बड़ा गड़बड़ चीज है बड़ा गड़बड़ चीज है फीरस भाई तो जैसे रहेगा आप लोग को बता इंडिया के मिनिस्टर सुरनाम गईल है और कराइबिस कबीत में गईल है इंडियन से मिनिस्टर बैतलान से साके के अब वो गईल है सुब्रमण्यम जयशंकर 2 तारीख से 10 तारीख ले वो हील कराइबिस कबीत में लोन तू करेगा जयशंकर इस समय पे जमैका में और सुरनाम में भी आएगा फेर द तरह से ना त्रिनिदाद एंड टोबैगो और बतावे है इंडिया
onderstreept het bezoek de nauwe historische en culturele banden van India met drie landen, vooral vanwege de aanwezigheid van nakomelingen van de Indiaanse contractarbeiders, zoals Hamlo Bhatti, de Ohik Mareu Jahe, India. Oké, minister Buitenlandse Zaken zegt dat de bezoek gericht is op de ondersteuning van Indiaanse politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname, Trinidad en Tobago. Naast officiële bijeenkomsten zal minister van Buitenlandse Zaken Jaishankar ontmoeting met het bedrijfsleven van de Indiaanse diaspora in drie landen. De India Hai Diswa, Trinidad Tobago Sanam, Jahape Hamluk India Academy, Suriname Megail Hai, ook jij help kreeg. Nogmaals mensen, de India zegt dat het bezoek gericht is op het ondersteuning van Indiaanse politieke partij, politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname en Trinidad en Tobago. Dus toe je baat he India ke buitenlandse यानी कि मिनिस्टर के बारे में हमारे जनता. अब देखो भैया हम चले हैं और आगे फिर वैरक भैया जैसे फोलन दाम में एक दाई जगल रहा बहुत बड़का स्काद हुआ भैया. ऐसे शीना में एको फिर वैरक का फैब्रिक है जहां पे फिर वैरक बने हैं वहां पे बहुत बड़का एक्सप्लोसिव भैया है और इस फिर वैरक फैब्रिक के नाम बा शांशा प्रोविंस हुनान में है भैया हुनान. तो एक स्वार एक्सप्लोसिव है लेगा फिर वेरेक फैब्रिक जो नहींगा स्टार्ट लियांग में शिनेई से प्रोफेंसी हुनांग में सोमवार के 26 लोग मर गए हैं इन सस्तक लोग वहां चटाई गए हैं और बहुत जबर जस क्रख फन एक्सप्लोसिव फर्नील द खबावन एंड फॉर और सख्त मिस्टर हुखो रुक वोल्कन दी बोफन खबित आईस्टीगन एक प्रेसिडेंट जो नहींगा यिंगपिंग हेफ ऑफ गिवन टू द ग्रोंडिग एंड स्नेल अंडरसुक एकर बारे में बोले चलो तुलो अंडरसुक करो जल्दी से कि कैसे चीज हुआ होई सके है फनवीखर खफार फन ब्रान बार स्वार बिस्क्रेट फॉरवर्डन इन ट्वी ऑफ्सला ग्रेमटर वेरदे है ओमलीखंद खबीदन गएफाकुएट मेंसे. तो चीना में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भइल है यहां नीदरलैंड में भी भइला तुलो जानो फोलंदाम में भैया फोलंदाम में भी यही चीज भइला. तो हमारे जनता और आगे हम जाइए मनोरथ का बोले भैया मनोरथ हम लोग के श्रीनाम में मिनिस्टर हैगा फॉर यूसीएस पॉलिसी मनोरथ एरकेन नीफन वर्क पॉलिसी मार वास्क्यूड फॉर मिस प्रोजेक्टेंस दिनस्टेड. हां बोले है बोले नीफन बरूपन मोहन आयत उफनन बनाद रखते रा अम्तनार बोले हमार दी इन प्राक्ते अन गदोग बलेद वर्ट गफूर्द सो दात मेंशन इन लीफर्स होदन कुनन फोर्स इन बोलो के मख के दूसर काम करे के जो ने वो अपन जिनगी और मुझ से चलाई सके है है वेस एरोब दात यालस दो 300 अनमी है पर्सोनन दी दीज फरलातों में एल्दस फाक in buitenland te gaan werken voor beloning aanzienlijk hoger ligt. Bole 300 admiokar chal gehe personeel buitenland mee kaam kareke te ICU mange apan admien ke pakde opleiding centrum mee 205 go een recruiter bevorder karise aur bole hiya par 5000 go policie agenden moeten liggen om optimaal te kunnen opereren. Momenteel telt de korpspolitie 2700 bemanningsleden. Als ze je poetje hebben, willen slechts ongeveer 10 zo nieuwe krachten worden aangetrokken, terwijl maandelijk 20 tot 30 personeelsleden het korps verlaten. Te op zoek naar de betere werkzaamheden en beloning, vaak buiten de langs grenzen ze hebben ja kam kreeg. Aur ekar bare mein sabar poochi sahitya nawa ke bare mein kaise hai Jane Shaya Mekshon ke die hai eerder als een van zijn vier adviseurs had betiteld beveiliging van politieambtenaren genoot of zal genieten. Antwoord Manore, daar is niets van waar. Hij voegt eraan toe dat ambtenaren in de praktijk wel ruimte zoeken voor extra inkomsten, wat mensen hun vrije tijd doen. Daar kan ik niets over zeggen, aldus de minister. De mensen werken ploegendienst om hun levensonderhoud te voorzien, maar velen meerdere banen, sommige verrichten in hun vrije tijd beveiligingswerk, bijvoorbeeld bij gouddrijven. Anderen gaan naar het binnenland om extra te verdienen. Te oesap mag hebben, ja. De kali corruptie ketje na hoe weet u, tiek hebben, want corruptie is subsie.
बड़का बड़का प्रॉब्लम है दिसवा में हमारी जनता, आप लोग तो एक बारे में पता है। अब देखो भैया, नीदरलैंड खाद्रीसी को ऑफारन द क्रूज के ऑफांगन एट नीदरलैंडर और नीदरलैंड पठाई से और जाएगा जो अब क्रूसो अकमारे बोली बाटी होंडियस में जो बसमेंट भैल है नीदरलैंड तीन गो आदमी के जाए लावे फॉर द क्रूज के दैट फॉर द कस्ट फॉर द काफे दी लिख ऑफांगन फॉल्स मिनिस्टर बैतलांस साकन ओम ए नीदरलैंडर एंड वेरल गेसोंथेट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रीक फॉर ट्वी एरेस्टेक्स टीके पेशेंटन अन टीम फॉर द अन टीम इज ऑफ ए स्किप दिनसदागमिदाग आन इंस्पेक्टेरन हेस इट द बेडूलिंग दैट से द मेडिसे टूस्टैंड फॉर ऑफारन द गान बकेकन टू नीदरलैंड द क्रूज स्किप फॉर ए नीदरलैंड्स ओशियन वाइड एक्सपीडिशन हैव गेन टूस्टेमिंग ओम आन द मेरन फॉर कैप वर्दे

0: और दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे, उसके बाद हमारा समाचार खत्म आने को होगा। तो हम चलते भैया, एक आदमी अपन ओतो चलावत एगो ट्रेन वाहन दिखिला फोटू पे चलावत गए है, मकानी कैसे अपन ओतो लेके तुतनी का बोले है तुतली फो कनाल में गोतरों में घुस गए भाई ओतो लेके। 50 वर्ष एक आदमी भैया शनिवार के उ गए ओतो लेके गोतरों में घुस गए भैया, बस एक ग्रुप आदमी आए लोग हेल्प करे और हेल्प का भैया हेल्प का 31,000 SR दे ऑटोमोबाइल स्वच्छ चुरा ले से और ओकर मोबाइल टेलीफोन ओके बरूफ करी से सब मैया। तो के कई नहीं कर बारे बोले जे तो के आ रेडिंग भल तो संबंध बोले तो के आले हेल्प करे मऊ हेल्प ना भाए उ तो के रूफ करे आवे है। तो यहाँ बताए गए है दोस्तों ऑटोमोबाइल इस बलांत में फूटते हैं इन कनाल एनवर्ड बरूफ दौर द हेल्पर्स। और दोस्तों ओकर बांध में देखो तीन को मेंदर यार के लंदन के छोटा छोटा लंदन 15-13-14 बरिस के सिपाही पकड़ के गए ले गए सब के सब बरूफ कर ले रहा आदमी लोग का रूफ कर ले रहा मोबाइल टेलीफोन तेखन ओफर एगो होटल है का परफॉर्म अनिमा जका नाम बार्सिलोना ना द बरूफिंग स्लूखन द फरदाख्तन ऑफ द फ्लक इन द रिक्ते लीली दौरब गए है। और वहां सिपाही 2 तारीख मई के उस सब के पकड़ ले से ग्रुप हुआ के जेमा 8 लंदन रहा dit maal was de slachtoffer beroofd van een geldbedrag en vervolgens met handel. 2 van de verdachten waren daarbij gewapend met messen. De incident vond plaats ter hoogte van Gunpatweg mee. Toen je baant hij een taam. Toen je op orde kijkt, bijna, betekent politie jacht op 2 vervluchtigen na aanval met een messen bij Shell Vredenburg mee. वहाँ पर 2 मिला के दौरा एक पकड़ी से को 14-15 बरिस के तेन ट्वेड 2 अंदर फरदाख्तन विस्त तो अनकोमन। तो बताई गई हैगा इस 20 तारीख अप्रैल के 34 यार हेबन बरूफ एंड मिसांडल और हमारे मनोरथ बोले क्रिमिनाली तैतवा कमती हो गए। हम जाए तेरे लास्ट न्यूज भैया यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो नहींगा सेलेंस्की बहरेन ड्रोन डील आनबोधन सेलेंस्की मेल ऑफ दट है गोल्फ स्टेट बसुक एंड दार अन प्रोडक्टिव गस्प्रेक हीफ मेर कोनिंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा। तब बोले ओके ऊ देगा भैया अन ड्रोन आन ड्रोन सेलेंस्की रहे जिससे से बकिन फर ओलो के मिड ओस्टर फाकर अपना डरी क्यों गोल्फ स्टेट क्रीक अंदर तो माकन में ग्रोस कालक से ईरान से ड्रोन अनफालन। बोले दिर ईरान उस सब के बोले बहुत करे है तो यूक्रेन बोले है छत लोग के हम देबे ही दो द ओरलक में त्रिसलन फील एरफारिंग में इस काकलिंग फान देर क्ले का ऑन बमांड टू स्टेलन द प्रेसिडेंट स्क्रीव द सेलन बराइट इस द फैलेखाइज एरफारिंग टू डीलन में बहरान ओम लीफ से बस्कर्मन एक है फोरस्टेल ओम एन ड्रोन डील द टीकरन द ड्रोन डी से भैया। तो यहां तक था हमारा आज की समाचार। हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम। जोनी नंबर 1 है हमारा नाम
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Dosto, is geet ka hai, dekha hai pahli baar. Aur Mofi ke naam hai Zanjan Alka Yagnik. Aur SP Bala Zubra Manian ka romantic song.

और मूवी का नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नहीं तक का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार नहीं तक का जोन और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं तुझको जन्म तार आया है लल्लेवारदे से दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना और है मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे, मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस इस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा, निकटी हो द्रियन जस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: Zo, die kan wel een cool best pro.
1: Yes, dosto. तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकट द्री एंसेस्टर का, पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

हाय दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

और मूवी का नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है साजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको सुनाएंगे मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे और गीत है इस फिल्म में दोस्तों लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा। निकटी होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में
1: टूटे ना दिल टूटे ना।
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

लता जी का ये सॉन्ग थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये सॉन्ग है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना गुमराह। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

मुझको मन फन तुझको मेरा प्यार पुकारे मूवी के नाम है घुमरा। अगला सॉन्ग के ओर हम जाते हैं और आप लोग जानते हो एक भी सुपरहिट सॉन्ग है ये, आओ सुना जाइए क्या कहते हैं हमारे दोस्तों।

बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फोन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

समझी मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों कौन थे ये चमेली कौन थे? दोस्तों चमेली अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

तले और दोस्तों दोस्तों दोस्तों तो एक गीत यहां से है और मूवी के नाम है प्यार किया तो डरना क्या। पद्मश्री मोहम्मद रफीका नीघ दिद्रिय सस्टकाये जो है।

और जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मूवी के नाम है प्यार किया तू डरना क्या, लेकिन जो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं है, लेकिन झूठ भी मत बोलना, झूठ भी मत बोलना। झूठ बोलने पर सजा मिल सकते हैं। और मूवी के नाम है तीसरी कसम।

झूठ बोलोगे तो आपको तो कहीं जाकर फरखलारिंग देना पड़ेगा, और वो कहां पर जाकर देना पड़ेगा इस गीत ने आपको बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर, मैं मुकेश कहां गया हुआ जो है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल, करोड़ों की चुराने वाला, The Heart of Millions, Mighty Mukesh.

और धीरे रे चलो मेरी बाकी रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर रे। और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए हैं। मूवी का नाम है 20 साल बाद। 1962 का ये सॉन्ग है दादा हेमंत कुमार।

साल बाद 1962 का दादा हेमंत कुमार का ये जोंग तेरू, ये जोंग तेरू।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और ओल्ड एंड गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

0: मोर मियो तो वे साय तू ए, क्या गा रही
1: है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

और दो लफ्जों की है ये कहानी। मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिने तमन इस फिल्म में काम किया है। गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुनो आदि, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जनम ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारों हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एंड महमूद इन गोवा अथवा से सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी पसंद लौट
0: हेमंत कुमार।

किनारा ये चंचल। और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं मैथी मुकेश की ओर।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेल का क्लियर दुपट्टा, आओ सुना जाए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

0: और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।
1: ना, ना।

फाहुंटी हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो।

अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड, जी हाँ, मैथ मुकेश और शारदा जी।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं, क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं सदा रहेगी, रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

हाँ, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत है पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता है इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम। फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

माइती मुकेश, माइती मुकेश और साथ ही मैं आशा जी आपको मिल के सुनाए हैं ये गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। तो क्या ख्याल अगर जो मैं यार आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का, लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है, चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। हमने चुन कर ये गीत रखे हैं, जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत। इस तरह से

मैं थी मुकेश द हार्ट ड्रॉप ऑफ मिलियंस और लता जी साथ दी और शानदार गीत हमने पेश किए, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये द्वैत सुनाए जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माई दी मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जयकिशन के साज पर। कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम। बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निकली सेफ न सस्त, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

मैंने भी प्यार किया, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाए हैं। तो आप कार्यक्रम में हैं जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है बीबीबी पिंफाउन एफएम पिंतनल पर। चलिए कार्यक्रम में हम चलाते हैं, या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

तुमको हमसे प्यार है, किस तरह से प्यार किया जाता है, यही कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। अब प्यार की सिलसिला अगर है ही है तो हम आपको बताते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी हाँ, ये उदित नारायण कह रहा है फिल्म मोहरा में कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और वगैरह वगैरह कैसे प्यार किया जाता है। चलो इन्हीं लोग से सुनते हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को प्यार करना नहीं आता, तो सीख लेते हैं कुछ भी।

अच्छा, हमने भी सीख लिए कि प्यार कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप भी सीख गए होंगे, और अगर आप जानकारी थे नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है। चाहे अगर प्यार की बातें तो हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि देखते हैं इस तरह से।

फिल्म गुमनाम में से निकाले हैं, ये नया गुमनाम है, ये मनोज कुमार के डरावनी गुमनाम नहीं है, ये नया गुमनाम है। इसमें उदित नारायण और श्रेया घोषाल मिल के आपको ये गीत सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

क्या बात है। हाँ, कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं ये प्यारा गीत हमने पेश किए। चलिए अगला नंबर चलाने वाले हैं हम, और वो ये है एवरग्रीन किशोर कुमार। क्या ख्याल है

0: वंडरफुल वंडरफुल।
1: फिर मजाक कर रहे हैं कुमार बहादुर।
2: शेखर बाबू, नम्रता अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नम्रता भी अच्छी नहीं। रोशनी होगी इतनी, किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर।
1: शेखर बाबू,
2: क्या आप इस अकेले सुनसान महल में संगीत और उल्लास की वो खोई जोत फिर से ला सकते हैं?
1: मैं कुछ समझा नहीं कुमार बाबू।
2: ये तस्वीरें देख रहे हैं आप?
1: जी,
2: हमारे पुरखों की हैं। इनमें कोई शराबी था, कोई व्यभिचारी और कोई इंसान भी था, लेकिन शिकारी सभी थे। आई मीन हत्याकारी।
3: डायलॉग के साथ हमने पेश की राजकुमार और विनोद मेहरा का ये डायलॉग। गीत के बाद आता है तो हमने सोचा इसे अगर चल रहा है तो इसे चलने दो।

मैं तुमके इज द हार्ट ऑफ मिलियंस, आंखों में तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं। ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अगर जब आप थोड़े से स्लोम हो गए होंगे, थोड़ी से गमी में आ गए होंगे, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

रंगीला रे लता की आवाज़ में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

काला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र ठेटी बनकर।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं, इस तरह से देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्तक 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, स्थानीय रेडियो पर आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, हो सकता है आप इससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे।

किसका गुस्सा है भला जिससे आए प्यार, किसका गुस्सा है भला जिससे आए प्यार, ऐसा दुश्मन हाय रे।

जी फिल्म आमने सामने में से निकाले हैं। जी हाँ, आमने सामने में से निकाले हैं। निकिता सैफ ने सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश किए। क्या ख्याल है, आप भी हैं मैं भी हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार इस तरह से।